FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, ये जरूरी

0: कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

देश वंदना भी आपने सुनी समूह स्वर में। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाजों में कबीर भजन।

0: चित्रा सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए खरीफ के लिए धान की उन्नत किस्में और विशेषता। इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर अभिनव गौराहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। खरीफ के सीजन लगठियात है, ऐसन मा किसान भाई मन हमर क्षेत्र मा, हमर राज मा मुख्य रूप से धान के खेती करे जाते। अगर खरीफ मा धान के उन्नत किस्म के धान ला लगाया जाए तो बढ़िया ढंग से हमन ला लाभ होते। आज आप मन ला सिंचित भूमि पर उन्नत किस्म और खर गुण के बात ला बताबो, ताकि अवैया खरीफ के मौसम मा आप एखर लाभ ले सका। आनी बानी के धान हवा, सबले पहले हम एकर नाव बताबो, अवधि बताबो, सामान्य उपज बताबो और ओखर सामान्य विवरण बताबो। बादशाह भोग सिलेक्शन एक, एकर अवधि है 140 से 145 दिन। सामान्य उपज के बात करी 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दाना एकर छोटे होते, मोटा होते और सुगंधित होए के कारण लोकप्रिय है। तरुण भोग के बात करी 140 से 145 दिन, 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन। दाना छोटे होते, सुगंधित चावल के रेंज में आते। दुबराज सिलेक्शन एक के बात करी यह 140 से 145 दिन, 35 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दाना खर मध्यम पतला होते, सुगंधित चावल के श्रेणी में आते। विष्णु भोग सिलेक्शन एक के बात करी ये है 130 से 135 दिन के किस्म है। एकर उपज होते 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दाना छोटे मोटा होते और सुगंधित होते। छत्तीसगढ़ मधुराज धान 55 130 से 135 दिन के 40 से 45 कुंटल एकर उत्पादन होते। दाना एकर मध्यम पतला, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम मतलब 55 होए के कारण सुगर बीमारी से ग्रसित मनखे मन पर यह लाभदायक है। अगला बात करी छत्तीसगढ़ सुगंधित भोग, एहू है 135 से 140 दिन के किस्म है, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरी बात करी छत्तीसगढ़ जिंक राइस दू 130 से 135 दिन। तना छेदक और गला छेदक बर मध्यम प्रतिरोधी, भूरा धब्बा रोग बर मध्यम सहनशील, 22 से 24 ppm जिंक के मात्रा। जिंको राइस की बात करी 130 से 135 दिन के अवधि, 56 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मध्यम पतला दाना, 7.83% प्रोटीन, 28 से 30 ppm जिंक। ट्रांबे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट एक 125 से 130 दिन के किस्म, 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, बौना मध्यम पतला दाना और सुगंधित किस्म। छत्तीसगढ़ देवभोग के बात करी 135 से 140 दिन के फसल, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, आधा बौना मध्यम पतला दाना सुगंधित किस्म। विक्रम TCR के बात करी यह 120 से 125 दिन के फसल है और 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देते। बौना मध्यम अवधि, लंबा पतला दाना, खासकर मुर्रा बनाए बर उपयोग करे जाते। जौन किसान भाई मन महामाया के फसल लेते उमन विक्रम TCR ला लगा सकते हैं। बौना लुचई के बात करी 107 से 112 दिन के फसल, 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लंबा पतला दाना, खाया में उपयुक्त बोना। छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान के बात करी 130 से 135 दिन, 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, पतला मध्यम दाना, मध्यम भूमि पर उपयोग। छत्तीसगढ़ जवा फूल 135 से 140 दिन की फसल, 38 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर, सुगंधित पतला और अर्ध बोना धान के किस्म है। सिंचित भूमि पर चंद्रहासनी, कर्मा मासूरी, राजेश्वरी, दुर्गेश्वरी ये सब भी बढ़िया 120 से लेकर 125-35 दिन की फसल है। यहू में लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज हमन ला मिल जाते। यहू मन अर्धबौना लंबा पतला धाने, गंगई, भूरा माहो, सहनशील किस्म है। तो किसान भाई हो, आप मन नवा किस्म ला भी अपन खेत में लगा सका था। केवल वही वही किस्म ला सरना 1010 महामाया लगाए से कई पैतका होते, उपज हा मार खाते और रोग कीट मन उखर प्रति सहनशील हो सकत है। एकर बर नवा नवा किस्म ला आज हमर कृषि विश्वविद्यालय आनी बानी की किस्म विकसित करे है, एहू ला किसान भाई मन ला अपन खेत में लगाना चाहिए। आहू के क्रम मन मा आप मन ला सुघर सुघर किस्म मन की जानकारी देत रहिबो। राम राम, जय जोहार।
0: खेती की बात में अभी आपने सुनी जानकारी खरीफ के लिए धान की उन्नत किस्में और विशेषता। इस संबंध में वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर राजेंद्र काचरू और चतुर सेन के हैं और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

मारिच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया।

राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

0: रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। मुख्य गायन स्वर राजेंद्र काचरू और चतुर सेन के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है मानव ईश्वर की अनमोल कृति। आलेख श्री हेमंत रामपल्ली वार का है।
1: मनुष्य ईश्वर की अद्भुत रचना है, जो स्वयं से की गई हर अपेक्षा और इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन इस बात पर विश्वास करने में हमारे जीवन का अधिकांश समय समाप्त हो जाता है। हम बाहरी तौर पर तो अपनी शक्तियों को मानते हैं, परंतु व्यवहार में स्वीकार करना कठिन होता है। कई बार असंभव भी लगने लगता है और हताशा हमें घेर लेती है। इस बाह्य और अंतर द्वंद को समझना और जीवन के किसी सुबह से नई शक्ति के साथ शुरुआत करना अत्यंत सरल है। हमारे जीवन को सरल और सुविधापूर्ण बनाने में जितने भी प्रयास और आविष्कार हुए हैं, वे सभी मनुष्य की ही लगन और इच्छा का परिणाम है। विश्व का कोई भी आविष्कार अलौकिक प्रतिभावान या साधन संपन्न व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। ये केवल स्वयं पर विश्वास और संसार को कुछ अनूठा देने की जिद का नतीजा है। ईश्वर ने मनुष्यों में मूल रूप से कोई भेदभाव नहीं रखा है। हम सब में सोचने की शक्ति का अनंत भंडार दिया, जिससे अकल्पनीय उपलब्धियां होती रही हैं और भविष्य में भी होंगी। दुर्भाग्यवश व्यवहारिकता में उपलब्धियों का प्रमाण हर व्यक्ति के जीवन में अलग होता है और अनपेक्षित असफलता कई बार हताशा भी बन जाती है। मानव

0: शरीर के सभी अंग स्थूल हैं, जिनमें मस्तिष्क भी एक है। अन्य अंगों की तरह मस्तिष्क भी एक निश्चित लय और प्रणाली में कार्य करता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा चेतन रूप से कोई योगदान नहीं होता। यही वो शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे मस्तिष्क में विचारों को भौतिक रूप देती है। हर विचार मूल रूप से सकारात्मक ही होता है, जिसका सीधा संबंध हमारी सफलता और प्रगति से जुड़ा होता है। सर्वोत्तम की आशा हमारा अधिकार है। हमारा वातावरण और हमारे आदर्श व्यक्तित्व हमें जीवन जीना सिखाते हैं, और हम लगातार प्रयास भी करते हैं, फिर हम कहां चूक जाते हैं। दरअसल मस्तिष्क की रचना जटिल तो है, परंतु कार्यविधि बहुत सरल है। मस्तिष्क में विचार की प्रवृत्ति और तीव्रता ही उसका भौतिक रूप निर्धारित करती है। ये तब भी होगा जब मस्तिष्क की कार्य पद्धति का ज्ञान भी न हो। विचार की तीव्रता की आज्ञा का पालन मस्तिष्क का दूसरा भाग पूरा करने में जान लगा देता है। हाँ, सावधानी विचार की प्रवृत्ति में रखी जानी चाहिए, और डर, शंका या असमंजस का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नकारात्मक भावों से अंतर्द्वंद होता है, जिसका परिणाम निराशा को जन्म देता है। हमारे पिछले अनुभव हमें नई सोच बनाने में रुकावट डालते हैं, लेकिन मस्तिष्क एक छोटे बच्चे की तरह आपकी बात मान जाता है, यदि आप उसे प्यार से समझाएं। हमें जीवन में स्वयं और समाज के लिए सर्वोत्तम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और निडर होकर अच्छे विचारों का बीज बोना चाहिए। हमारी सफलता हम स्वयं तय करते हैं। मन पर विश्वास का ही दूसरा नाम स्वयं पर विश्वास है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। विषय था मानव ईश्वर की अनमोल कृति। आलेख था श्री हेमंत रामपल्ली वारका। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। इसमें आज सुनिएगा लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे नेमी चंद साहू। सुबह 10 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये भी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। शाम 5:05 पर विविधा कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस विषय पर बातचीत होगी प्रथमेश मिश्रा और रॉबिन पुष्प से। कार्यक्रम प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। शाम 5:35 पर महिला सभा में सामयिक चर्चा में सुनिएगा सड़क सुरक्षा नियम, जिम्मेदारी और जागरूकता। और क्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत डॉक्टर पूनम यादव से गीता होता की बातचीत आप सुनेंगे। विषय होगा आंखों की देखभाल हम कैसे करें।

आज सुबह कार्यक्रम सुबह 7:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे। सदाबहार नगमे सुनिएगा सुबह 7:30 पर और नए तराने हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 पर और सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 8 बजे। कलाकार होंगे सुगम संगीत में भूपिंदर सिंह। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का समय होगा शाम 6:20 और फिर शाम के 7 बजे। विविध भारती

प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, फिर दिन के 11:30 से 11:55 तक, और फिर दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, और फिर रात के 9:15 से रात के 11 बजे तक।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे प्रसारित किए जाएंगे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के कोट का विषय होगा, बर बिहाव मा खाए पिए के जिनिसला नुकसान झन करो। और शाम 7:30 पर किसान वाणी में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: एम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्. प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें.
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति. प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति. असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः. तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामिरात्, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति. स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामिरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति. द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है।

0: इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मित्रों नमस्कार। आ गई एक नई सुबह हमसे मिलने, बातें करने और साथ साथ ये याद दिलाने कि अपने साथ गर्मी के बचाव वाली चीज़ों के साथ साथ बारिश से बचाव वाली सामग्री जैसे कि रेनकोट और छाता भी रख लें इन दिनों, क्योंकि धूप और बरसात का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब प्रत्यक्ष हो जाए। जहां वर्षा से धूप में झुलसते पौधों को राहत सी मिलती है, वहीं कुछ फसलों को नुकसान भी हो रहा है। इस बेमौसम बरसात से सब कुछ उलट पुलट होता सा दिखता है। इसलिए समय पर पौधारोपण की हम तैयारी कर लें। बस एक माह का समय बचा है, पेड़ पौधों की हरियाली होगी तभी तो हम सभी का जीवन सुकून से कटेगा।

मित्रों, गीत से पहले हम बातें कर रहे थे पेड़ पौधों की। तो आपको ये बताते चलें कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। यदि पेड़ पौधे ना हो या फिर उनकी सुरक्षा हम ठीक ठाक ना कर पाए तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं भला, सोचिए तो ज़रा। ठीक कहा आपने, सांस नहीं मिल पाएगी हमें, छांव नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग में तेज़ी आ जाएगी और बिल्कुल सही, हमारे खान पान पर सीधा असर पड़ेगा। इसी बात पर ध्यान देते हुए इस वर्ष की थीम रखी गई है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, जिसका उद्देश्य है फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाकर वैश्विक खाद्य पूर्ति को सुरक्षित करना। ऐसा होने पर भूख को समाप्त कर गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये सभी बातें सरल हो पाएंगी। हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 98% और जो भोजन खाते हैं उसका 80% पौधों से ही प्राप्त होता है, लेकिन हर वर्ष कीटों और बीमारियों

0: क्षतियों के कारण लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण सबके लिए भोजन और पोषण उपलब्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए पादप जैव सुरक्षा पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे भोजन उपलब्ध हो पाता है, किसानों का काम सुरक्षित रहता है, या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू बनाए रखता है और बहुमूल्य जैव विविधता को संरक्षित भी करता है। इस व्यापार में लागू किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मानक, जैसे कि जैव सुरक्षा उपकरण, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और सभी के लिए श्रेयस्कर जीवन को सक्षम बनाने के लक्ष्य का आधार बनते हैं ये सुरक्षा मानक। तो हम सब भी इन बातों का ख्याल रखें ताकि खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा के लक्ष्य में हम सभी भागीदार बन सके। और अब चलिए मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
1: प्रातःकालीन सादर अभिवादन के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में इन दिनों शहर से लेकर गांव-गांव में भी लगातार विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसी क्रम में इस समय तखतपुर में मन्यारी नदी पुल से बिलासपुर मार्ग में ग्राम मोढ़े मार्ग तक मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। निश्चित रूप से इस निर्माण कार्य से आम लोगों को साफ सुथरी चौड़ी सड़क मिलेगी, आवागमन और भी सुगम होगा, वहीं यहाँ की सुंदरता भी बढ़ेगी। संभव है कि इस मार्ग में चौड़ीकरण की सीमा में कुछ अतिक्रमण जैसी स्थिति भी आ सकती है, अतः आप सभी से अनुरोध है इस कार्य में लगे अमले का भरपूर सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द सभी के लिए उत्कृष्ट सड़क उपलब्ध हो। इसके साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, हम सभी की प्रत्येक यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हर स्तर पर हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु दुख इस बात का है कि अनेकों प्रयास के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं और इसमें जन हानि भी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें हम सभी को बहुत अधिक चैतन्य होना होगा। यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो इस दंश से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बस आदि में यात्रा करते समय चलते वाहन में ही उतरते हैं या वाहन के चलने के बाद चलते वाहन में दौड़ कर चढ़ते हैं, यह घातक है, ऐसा मत करिए। इसी प्रकार किसी भी वाहन में यात्रा करते समय कई बार खिड़की के पास बैठे व्यक्ति का गमछा आदि या किसी महिला की चुन्नी या साड़ी का पल्लू खिड़की से बाहर उड़ता रहता है, जो कभी भी किसी भी वाहन से या अन्य किसी वृक्ष पोल आदि में उलझ सकता है, परिणाम गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अतः यात्रा के समय हमेशा सतर्क रहे, जागते रहे, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। और अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।

0: आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोधान की स्थापना और फूलों की उत्पादन तकनीक। और 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फूड की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07720772 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मित्रों, संदेशों से पहले ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर आपने सुना, और अब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में। इन दिनों हम मना रहे हैं ये सप्ताह सड़क सुरक्षा अभियान, जो WHO द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा और दुर्घटना निवारण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सड़क दुर्घटनाओं में चोट और मौतों को न केवल इससे लोगों पर, बल्कि उनके पूरे परिवार, समुदाय और देश के मानवीय पक्ष, स्वास्थ्य और वित्तीय संसाधनों पर भी गहरा असर होता है। दुख और पीड़ा के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों से जुड़ी हुई भारी लागत, उत्पादकता और समृद्धि की हानि के कारण देश की संपत्ति भी नष्ट होती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुंचती है। इसलिए इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी हो

सबको, केवल गाड़ी चलाते समय ही नहीं, जब हम पैदल चलें, रोड क्रॉस करें, जब अपनी गाड़ी पार्क करें, हर वक्त हमारे कदम सुरक्षित जोन की ओर बढ़ने चाहिए। ये हमें हमेशा ख्याल रखना होगा। इन सभी के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। दिन और रात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बेपरवाह होकर कभी भी हम सड़क पर ना निकलें, चाहे पैदल हो या फिर गाड़ी में। हमें ये ध्यान देना ही होगा, तभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का फ़ायदा मिलेगा हमें।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। हर, हर, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में पहला गीत आइए सुनते हैं, कोयला फिल्म से लिया है इसे हमने। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, इंदीवर के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

कोयला फिल्म का गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, इंदीवर के बोल और राजेश रोशन का संगीत था। और अब आइए सुनते हैं पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज़ों में। इंदीवर का गीत है, बिजू शाह का संगीत है, फिल्म का नाम है मोहरा।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं।

0: खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में संघर्ष फिल्म का गीत अभी आपने सुना। समीर के बोल थे, जतिन ललित का संगीत। और अब अगला गीत आइए सुनते हैं। अभिजीत की आवाज़ है, जावेद अख्तर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है, फिल्म का नाम यस बॉस।

0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है।

0: और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।

0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
5: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
3: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
6: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
3: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइव सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में

0: 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe

जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइया में क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार में आज हमन लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव के संग गोठ बात के तीसरा कड़ीला सुनबो। पिछले कड़ी में हमन लगभग 80 वर्षीय जयंती यादव जी के जीवन के जो अनुभव है वोला सुनेन। अपन गीत के माध्यम ले समाज ला एक नवा रद्दा दिखावत है जयंती जी हा। सुनहा बिहान नवा बिहान चंदैनी गोंदा और दौना पान के समय ले जयंती जी हा गीत के माध्यम ले लोगन मन के दिल में जगह बनाए है। ये तीसरा भाग में फिल्मकार मनु नायक जी और लता मंगेशकर जी के साथ ओकर भेंट कैसे होइस तेला सुनबो। ता आवो सुनथन भेंट वार्ता के तीसरी कड़ी।

0: मनु नायक हा, मनु नायक ला जानतो?
1: हाँ हाँ, कही देवे संदेश फिल्म बनाई,
0: संदेश फिल्म बनाई।
1: हाँ हाँ,
0: वो समय में एक लेखक महतारी रहे,
1: हाँ हाँ,
0: नहीं दू जन हो गए,
1: हाँ हाँ,
0: और वो घर ललीपत हो,
1: हाँ हाँ,
0: मनु नायक,
1: हाँ,
0: और मलय चक्रवर्ती खोजात खोजात खोजात खोजात,
1: हाँ,
0: और दीपक गुरु जी मर गए बेचारा, पोटिया के गा
1: दीपक चंद्राकर,
0: चंद्राकर,
1: हाँ हाँ,
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर, कोई छत्तीसगढ़िया का छत्तीसगढ़ में खोड डाल रहे हो, गांव गांव खोड रहे हो, दुर्ग में चले गया, कहां कहां रायगढ़ चले गया, बोले छत्तीसगढ़ गवा मोर पिक्चर में गवा हुआ आज बार, मो चाहत हो ऐसे छत्तीसगढ़ के गवैया बोला भिड़ा देते थे है। ये ला हम पुलिस दीपक ला, तो हमें फिर चाहे क्या थे एक जन है, अरे वो कर अब्बड़ नाम सुने, वो लड़का कहाँ रहते
1: हाँ,
0: है
1: हाँ,

0: खेरागढ़ के
1: हाँ
0: जेला लता मंगेशकर ला वो सिखाए रही से
1: हाँ
0: गुरुजी
1: हाँ हाँ
0: ते मोला देखे लाइस ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा, तो कहीं देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप? हा?
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रहे हो।
1: हाँ, आकाशवाणी ले?
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लग रही से यहाँ के सब मशीन लगी रही से
1: हाँ, अच्छा
0: मुरली चंद्रा कर घर में
1: हाँ
0: पूरा मशीन धर के गेरी से
1: हाँ
0: वो नाम बता तो डूबे
1: बरसाती भैया,
0: बरसाती और
1: हाँ
0: एक जनऊ
1: बिसाहू,
0: बिसाहू और
1: हाँ
0: एक जनऊ रही से
1: हाँ
0: तीनों झनगेरी से
1: हाँ
0: मोर गाना ला
1: हाँ
0: रिकॉर्डिंग करे बर
1: अच्छा
0: दा वो मन गेरी से
1: हाँ
0: तो ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए
1: हाँ हाँ
0: तो वो रेडियो वाला सुन के
1: हाँ
0: खैरागढ़ के
1: हाँ
0: पड़ोसर आके मोला कहते बेटी ये गाना कैसे गाए है
1: हाँ
0: ये गाना तोला कौन ऐसे गुरु
1: हाँ
0: जी तोला बताया है और सिखा है।
1: हाँ
0: मोर कोई गुरु नहीं है
1: हाँ
0: मोए अपन गाथो छत्तीसगढ़िया गाना। अच्छा मन्नू नायक है
1: हाँ
0: गाला लिपत रहे हो अब दीपक चंद्राकर कर आप बैले आए
1: हाँ
0: पड़ोसर आए बड़े जान साहब आए जंती
1: हाँ
0: काबर
1: हाँ
0: अरे तोर गाना गवाए बा फिल्म में
1: हाँ
0: मोर फिल्म में गाना गाऊं ये देई कतका बहागे मोर
1: हाँ
0: अब वो मनाइन बैठा रहे हूँ वो मल्ला
1: हाँ
0: मन्नू नाइक ला
1: हाँ
0: भाई मनो राखी बांधे हूँ
1: हाँ
0: अब बोला का
1: हाँ
0: कहते मलाई चक्रवर्ती आई
1: हाँ
0: आ ले तो गा
1: हाँ
0: तो गायू गाना
1: हाँ
0: वो मन खुश हो गए
1: हाँ
0: तक खरोरा में होतरी से
1: हाँ
0: शूटिंग ओकर
1: हाँ
0: मन के
1: हाँ कहीं देवी संदेश फिल्म के?
0: फिल्म के
1: हाँ
0: मोहम्मद रफी आए रही से
1: हाँ
0: लता मंगेशकर आए रही से
1: हाँ
0: आ वाह देखे आ लता मंगेशकर ला देखे
1: हाँ
0: चित्त
1: हाँ
0: मैं कहूँ माँ सरस्वती देखा थो
1: हाँ
0: आज मैं हाँ रेडियो में माता ला सुने
1: हाँ
0: कर आवाज ला वो में गाय वो मेरी सोनारी सोनारी सोनारी दे दूंगी जान जुदा मत तू हो नरे मैंने तुझे पड़ा दे रुमियाना होया कसू रुखपा मत तू हो नरे मैं तोर बहुत पुजारी हूँ माता
1: हाँ
0: और तोरे गाना गा के मैं बहुत आज ऊंचा हूँ फिर छत्तीसगढ़ी गाना सीखे
1: हाँ
0: ता यह सब चलत रहा है
1: हाँ
0: मोहम्मद रफील देखियो
1: हाँ
0: हाँ कल मोर रसीक तो देखो ऐसे
1: हाँ
0: ऐसे कलाकार के संगत हो इस मूर्ते
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: तो वो गात रहा है वो कर यह गाना रहा है मोहम्मद जमकत नदिया बहनी लागे पर्वत तो रुमिता नरे रे भाई पर्वत तो रुमिता हो ये सब
1: हाँ
0: अरे बाप रे ऐसे ऐसे कलाकार
1: हाँ
0: और माता ला छत्तीसगढ़ ही नहीं बोले ला
1: हाँ
0: कौन ला
1: लता जिला,
0: नहीं आए
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ ही गाना नहीं आए हो
1: हाँ
0: आ गाए वो हा बोला
1: हाँ
0: गवाए बर लाए रही से मनु नाई का पैसा में
1: हाँ
0: आ वो हा गानी से के छत्तीसगढ़ ही
1: हाँ
0: अब वो हा कहा पंजाबी गवैया
1: हाँ
0: मद्रासी गवैया
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: मराठी गवैया
1: हाँ
0: माता हा गा
1: हाँ हाँ
0: छत्तीसगढ़ ला वो हा बासी साग नून चटनी वो का गानी और का गोछाई वो हा अमृतवरी अमन का गोछा था तैसे
1: हाँ
0: है कहाँ जाता तो का
1: हाँ
0: साग वो
1: हाँ
0: नूने का वो
1: हाँ
0: मिर्चाई का वो
1: हाँ
0: है गोंदली रामकलिया
1: हाँ
0: ओला जानी वो लता मंगेशकर
1: हाँ
0: आए
1: तब फिर कैसे हुई? हाँ
0: ओला गाना दिरी माला
1: हाँ
0: बिहनिया ली उगबी

0: माता मोला कथे छत्तीसगढ़िया कैसे गाती है बेटी तू बता। मैं बोलो वोला टोक दे हूँ माता ला, नहीं हमारे छत्तीसगढ़िया में ऐसे नहीं गा माँ। तो कैसे गाती है? अब डर के मारे ऐसा ढाई हो भाई, इतना बड़े कलाकार वो कर सामने में गाना कौन ला इसे लगी बेटा। तब मैं माताल बोलो देख माँ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की गाना बड़ा सुरीली है, छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ऐसे गढ़े माता जे में भारत ही में समाये है, ये सारी इंडिया पूरा ही छत्तीसगढ़ में समाये। एक अर पीरा ला माता हम गाथन छत्तीसगढ़ महतारी मोर, हम गाथन अर प पैरी के ढार महानंदी है अपार, ओकर अंग अंग ओकर उंगरी के नख नख ला हमन जोड़ के कभी मन बता बना है ऐसे तेला हमारी आवाज के माध्यम से ओला हम पिरोथन मां छत्तीसगढ़ ला, हम जागृत करथन मां छत्तीसगढ़ ला। बोले कितनी अच्छी सोच है तेरा, तर रिहर्सल हो 15 दिन ले रहे हो माता के साथ में, लता मंगेशकर के माता के साथ में, वही मोला पढ़ाई से माता बोला लेगाद्री से बम्बे तेरी आवाज बहुत सुंदर है कही, ये दादा मोर नाना लेके आए मैं नहीं जाऊ मोर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऐसे कही के। तब हो गई
1: कौन सी गाना?
0: ओ बिहनिया ली उगबी सूरज देवता तेरी। मैं बोला नहीं माँ छत्तीसगढ़ तेरी नहीं है हिंदी हो गए माँ, हिंदी में नहीं क्या गाऊं तो बच्चे बोल बेटी ऐसे है गाना गाना बिहनिया ली उगवी सूरज देवता तोर चर

0: माँ मुला लेंगे बॉम्बे।
1: अच्छा
0: धार के लेंगे।
1: हाँ हाँ
0: यही लेंगे तोर का कथे
1: मनु नायक जी। हाँ
0: मनु नायक।
1: हाँ हाँ हाँ
0: चल ऊंचे चल कह के।
1: हाँ हाँ
0: तो लोग लेके उधार के चल कह के। लेके हम माता।
1: हाँ
0: तोला तनखा मिली।
1: हाँ
0: तो बहुत बड़े बिल्डिंग रही।
1: हाँ
0: ते वहां चल।
1: हाँ
0: मैं काकरो भाड़ को नीम नहीं आए बेटा।
1: हाँ
0: मोर छत्तीसगढ़ महतारी
1: इंचे सेवा करूं की के नहीं।
0: मोर
1: क्या
0: छत्तीसगढ़ की पीरा ते का जान में बंबई वाले मन।
1: हाँ हाँ
0: आए
1: हाँ
0: अपन ढंग से तुम गाओ बजाओ माता राम।
1: हाँ हाँ
0: अपन ढंग से मैं हाँ अपन छत्तीसगढ़ में एक दिन ते जागृत हो बे माता।
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ में मोहला जागृत होना है। मोला पैसा नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: मैं पैसा तो दुनिया कमाईस आओ गाइस मगर मैं हाँ पैसा नहीं कमाई बेटा। मैं सिर्फ तुम्हार मन के आशीर्वाद तुम्हार मन की प्यार ला छत्तीसगढ़ के ये मोर आचराम समेट के रखे। तब तो बुला है का तभी तो मोर याद करतो का
1: हाँ,
0: नहीं तो मोला कौन जानती।
1: हाँ।

0: दीदी आप मन ह बड़ सुघर जानकारी देवत हो, और हमर जो नवा पीढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संगी है, हमर छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू है, ते मनला आप आशीर्वचन के रूप में अपन का संदेश देना चाहो।
1: ओहो हो हो, धन्य धन्य। अरे कोनो गात रथे पहली जमाना के छत्तीसगढ़ हिला, हमार कितना बड़ा ये दिस है, हम दे हैं छत्तीसगढ़ ला, हम गा के पीरो के बासिल खा के चटनी रोटी खा के हमार छत्तीसगढ़ ला जगा हैं। आज के लड़का मन हा हमार जैसे हम तपस्या करें अपन छत्तीसगढ़ ला जगाएं, और छत्तीसगढ़ में हम फोड़ता नहीं गाएं गाएं ते

हम रामायण गीता भागवत का मैया ला भगवान तक ला घलो कलाकार मन अपन बस में करथन गा के जन जन जन

0: क्या है?
1: हाँ
0: वो में डूबो,
1: हाँ
0: उसमें डूबो।
1: हाँ
0: माता को कैसे गाया जाता है जस गाना?
1: जी
0: अभी अभी लड़का मन गाते, अभी के जो गाना मन है, हाय हाय हाय। मैं कहा ये मन, हाय रे मन, हाय रे मन, तोर मन कैसे लागे प्रभु तोर मन। यहां तो संत बस है, वो तो भगवान मना तो यहाँ है। कहाँ को जो तत्ते है,
1: हाँ
0: कहाँ मंदिर में जावे,
1: हाँ
0: वो तो स्थापना दे है तेला,
1: हाँ
0: घंटी बजाता ना।
1: हाँ
0: तोर में तो सबे भरे है,
1: हृदय में
0: हृदय में भगवान मना तो तोर मन कैसे लागे, राजा महल की भीतरी में तोर मन कैसे लागे। लड़का मन ला खोजे, अरे मैं तो चले जाऊं, मगर तू मन हो तो बढ़िया से तो गाओ। आए ऐसे ऐसे धुलंधर धुलंधर कलाकार मन चलेगी बेटा,
1: हाँ
0: आए छोड़ छोड़ के गाना मन ला, मगर वो गाना काबर बिगाड़ थो। खुनुर खुनुर।

0: பயிரிலாச்சி, வெறி பயிரிலாச்சிட்குசரம் நல்லாகி, பயிரிலாச்சிட்குசரம் நல்லாகி.
1: जी हाँ हाँ
0: यद जिंदगी के नए ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जुड़ी लहर गंगा ले ले तिन्ना पुन्नी के मेला में जाते दुख लाय करिया तीन गंगा स्नान ले ले तीन केला चढ़ा दे तीन भेला मना ले तीन भोला भगवान. काया माया के नए ठिकाना काया माया के नहीं ये ठिकाना मिला ठेला देखा तीन जू

0: तीन जुड़ी लहर गंगा ले ले तीन।
1: दीदी बड़ सुघर आपसन गोड़ बात हुआ थे, बड़ सुघर जानकारी मिला थे। और हमर जो नवा पीढ़ी है, नवा कलाकार है, आपसन होए बातचीत ल सुन के जरूर प्रेरणा लीही। और आप
0: बात
1: मन
0: है भगवान मोर
1: हाँ
0: मोर आशीर्वाद है।
1: हाओ
0: ये अभी गात है लड़का मन हा,
1: हाँ
0: जैसे भी गाए
1: हाँ
0: वो जनती यादव तो नहीं बन जाए।
1: हाओ
0: और का कहते लता मंगेशकर के गाना जे गाते थे, लता मंगेशकर तो नहीं बन जाए।
1: हाओ हाओ
0: मोहम्मद रफी के गाना गाते तर मोहम्मद रफी तो नहीं बन जाए।
1: हाओ
0: मगर नहीं, जैसे भी गाते उस बच्चे लोग
1: हाओ
0: भगवान
1: हाँ
0: उसको सरस्वती मैया ने,
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ माता ने
1: हाँ
0: कर्मादाई
1: हाँ
0: को रक्षा करे,
1: जी जी
0: उस आगे बच्चा मल्ला बढ़ाए।
1: जी
0: का है
1: हाँ
0: मोर नो है
1: हाँ
0: वो गाना है बेटा,
1: हाँ
0: किसी कवि की कलम है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा
1: हाँ
0: मरना नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: उसकी आत्मा ला मैं नहीं गात हूँ तो दूसरा गात है, म कोई और दूसरा गात है, कोई और दूसरा गात है। तो वो गाना हम मरे नहीं है, वो नहीं मरे है
1: हाँ
0: जे लिखे है कलम से,
1: हाँ
0: वो मरे नहीं है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा जिया रहे,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा
1: अक्षर अमर है,
0: अमर
1: गीत
0: है,
1: अमर है।
0: गीत अमर है।
1: हाँ
0: हाँ गाना अमर करत है लइका मन भगवान।

0: हमना
1: हाँ
0: ओ गाना ला
1: हाँ
0: सुरताल चंदन घोरत हो सपना लबीर बीर आगोरत हूँ। यह सब गाना है।
1: जयंती यादव जी, आप मन हा हमार श्रोता मन ला अपन जीवन के अनुभव ला गीत के माध्यम ले कैसे आप मन हा समाज ला नवा रद्दा दिखाए हो और नवा पीढ़ी ला गीत संगीत लोक गायकी के शिक्षा दे के वो मन ला घलो ये लोक गायन की परंपरा ला आगे बढ़ाए के प्रेरणा दे हो। हमन ला समय दे हो, स्टूडियो में आए हो, एक हर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां में अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे नेमीचंद साहू। आप सुन रहे थे इस भेंटवार्ता का तीसरा भाग। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। इसमें आज आप लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव से भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे नेमीचंद साहू। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से सुबह के 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और सुबह 9 बज

बजकर 55 मिनट पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

अभी आप सुन रहे थे मोहसिन शेख, ज्योतिर्दा टंगरी और साथियों की आवाज़ों में सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। दोस्तों वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के एम एम सी सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान की तर्ज पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: रखियाने।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: रामो।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हारी बोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीदी न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवीं बैठक के दौरान दी गई। बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबी 8,000 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण और तीसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब हितग्राही को 15 मई तक एकमुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य के दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है।

0: नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। आप प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे।

0: शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इस उक्ति के प्रकाश में लोक कल्याणकारी सरकारें नित नई योजनाओं को लागू करती हैं। इसी के तहत नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक पुराने धरने पर चलने वाली शिक्षा नीति केवल कुछ क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर पाती है, जबकि परिवर्तित नीति बहुत सारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। भारत एक प्रगतिशील देश है, यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी रोजी रोटी के संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। बात यदि हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है और न ही समान संसाधन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि हर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये योजना प्रदेश भर में लागू है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सहायक महाप्रबंधक व्यवसाय एवं सांख्य श्री अमरजीत सिंह खनुजा।
1: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा हेतु ब्याज का अनुदान देने की योजना है। यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अधिकतम 4 लाख तक के ही शिक्षाहीन पात्र होते हैं। हितग्राही की पात्रता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक

0: हो सकती है। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान मॉरेटोरियम अवधि के पश्चात जो ब्याज लगता है उस पर देय होता है। ब्याज अनुदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% अर्थात 100% छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहन किया जाता है। अन्य जिलों में 1% जो है वो विद्यार्थियों को देना पड़ता है और 99% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना ड्रॉप आउट निष्कासित विद्यार्थियों को योजना का के लिए नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके लिए लागू है और जितने भी संस्थान है लाइक IITs, IIMs, NITs और एम्स, MCI, DCI, INC इत्यादि में ये स्कीम लागू होती है। अप्लाई तो एक्चुअली बैंक के थ्रू जाता है। जब बैंक में आप शिक्षा ऋण लेते हैं तो बैंक इसका क्लेम करता है गवर्नमेंट को, पात्रता अनुसार जो खाते होते हैं। जब आदमी अप्लाई करता है लोन की, तब बताना पड़ता है कि हाँ मेरी जो लाइफ मेरी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है और टोटल जो मुझे 4 लाख के लोन चाहिए, कौन सी जगह मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये इस योजना का पात्र है कि नहीं। पात्र खातों का जो अनुदान क्लेम है वो बैंक के द्वारा सब्सिडी के इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम की जाती है। दस्तावेज में आप जहाँ पर हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उसके सारे दस्तावेज जिसमें आपको फीस वगैरह सब रहेगा, एजुकेशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ, और इसके अलावा आपका KYC लगेगा, जो भी एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट है सब एजिटीज लगेंगे।
1: और इसको लौटाने की अवधि क्या होती है सर?
0: जो एजुकेशन लोन की नॉर्मल पॉलिसीज बैंक की होती है उसके अनुसार, मतलब जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन में ही अपनी ओर से एड ऑन दे रहा है छत्तीसगढ़ शासन ताकि इसको प्रमोट कर सके एजुकेशन लोन को भी, और उनके लिए एजुकेशन के साधन भी हो सके जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं। देखिए शिक्षा ऋण तो एक्चुअली एक बार मिलता है क्योंकि आप पूरे कोर्स का पैसा ले लिए रहते हैं ना, तो दोबारा मतलब इसमें कोई डोज सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेडिकल करना है तो मेडिकल आपका 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल में जो फीस लगनी है जो भी लगना हो तो पहले प्रोजेक्ट होकर आपको लोन मिल जाता है, तो दोबारा लोन जैसा कोई इसमें होता नहीं है सिस्टम।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के पात्र वे सभी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ एक लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के वे सभी जिले जहां कभी हिंसा का आतंक था, वहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ने शिक्षा का परचम फहरा दिया है। अब यहां उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के बंद द्वार सरकार ने सभी के लिए खोल दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने उच्च शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करने का आधार प्रदेश सरकार ने दिया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके करियर को सुदृढ़ सोपान प्रदान करने में भरपूर सहयोग देती है।
1: ब्याज नहीं लग रहा है लोन लेने में तो अच्छी बात है, और पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे, बच्चे भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनके में कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ब्याज देना है तो हमको उस चीज़ के लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ अच्छा है, वो बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
2: मैं मोदी और विष्णुदेव साय को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला। जो सभी छात्राएं हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्याज देने में, और वो सभी उन सभी के लिए माफ़ हो गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आज कई शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिनमें पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत होती है। AICTI, UGC, MCI, DCI और INC जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ये मॉरिटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करता है।
1: आप हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिन्हा।
2: यह जो राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना है, यह तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए योजना सत्र 2012-13 से लागू है। इस योजना में ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के चरम वामपंथी प्रभावित जिलों पर जो वहां के जो विद्यार्थी हैं उनके ब्याज का संपूर्ण भार राज्य प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और राज्य के शेष जिलों में जो निवासी शिक्षार्थी हैं उन्हें केवल 1% की दर से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और शेष राशि की ब्याज जो है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जो है केवल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कीम जो है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और जैसा कि मैंने पहले

बताया जो नक्सलाइट बेल्ट है वहां पे मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है और बाकी जो जिले हैं उसमें विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। केनरा बैंक इसका नोडल बैंक है, लेकिन राज्य के विद्यार्थी जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या 21 प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वह 4 लाख है। तो सरकार की ओर से यह एक पहल है जिसमें

छत्तीसगढ़ राज्य विकास के पंख फैलाए हर क्षेत्र में तरक्की की परवाज भर रहा है। सरकार ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वंचित वर्ग पर सरकार के लगातार ध्यान देने के कारण ही आज जनजातीय बाहुल्य इलाकों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां बड़ी संख्या में दीक्षित होकर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की बहती अविरल धारा को, जहां हर कोई कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: से अभी हम रिले कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नए तरहने। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं मिथुन और दीपाली की आवाजों में सईद कादरी के बोल, मीत ब्रदर्स का संगीत, फिल्म का नाम की एंड का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मिस सीमा
1: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मिस सीमा
1: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो।

0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने, और पहला गीत की एंड का फिल्म से आपने सुना था। मिथुन और दीपाली की आवाजें, सईद कादरी के बोल, मीत ब्रदर्स का संगीत। और अब आइए सुनते हैं वजीर फिल्म का गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा है और शांतनु मोहित्रा का संगीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट

वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल

पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोद्यान की स्थापना एवं फूलों की उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 266-592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: और अब आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से एक बार फिर।
1: प्रातःकालीन सादर अभिवादन के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में इन दिनों शहर से लेकर गांव गांव में भी लगातार विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसी क्रम में इस समय तखतपुर में मन्यारी नदी पुल से बिलासपुर मार्ग में ग्राम मोढ़े मार्ग तक मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। निश्चित रूप से इस निर्माण कार्य से आम लोगों को साफ सुथरी चौड़ी सड़क मिलेगी, आवागमन और भी सुगम होगा, वहीं यहाँ की सुंदरता भी बढ़ेगी। संभव है कि इस मार्ग में चौड़ीकरण की सीमा में कुछ अतिक्रमण जैसी स्थिति भी आ सकती है, अतः आप सभी से अनुरोध है इस कार्य में लगे अमले का भरपूर सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द सभी के लिए उत्कृष्ट सड़क उपलब्ध हो। इसके साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, हम सभी की प्रत्येक यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हर स्तर पर हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु दुख इस बात का है कि अनेकों प्रयास के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं और इसमें जन हानि भी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें हम सभी को बहुत अधिक चैतन्य होना होगा। यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चले तो इस दंश से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बस आदि में यात्रा करते समय चलते वाहन में ही उतरते हैं या वाहन के चलने के बाद चलते वाहन में दौड़ कर चढ़ते हैं, यह घातक है, ऐसा मत करिए। इसी प्रकार किसी भी वाहन में यात्रा करते समय कई बार खिड़की के पास बैठे व्यक्ति का गमछा आदि या किसी महिला की चुन्नी या साड़ी का पल्लू खिड़की से बाहर उड़ता रहता है, जो कभी भी किसी भी वाहन से या अन्य किसी वृक्ष पोल आदि में उलझ सकता है, परिणाम गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अतः यात्रा के समय हमेशा सतर्क रहे, जागते रहे, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।

0: जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सनम रे फिल्म से टाइटल सॉन्ग है ये, मिथुन और अरिजीत सिंह की आवाजें, गीत और संगीत मिथुन का।

सनम रे। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी,

0: का
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
0: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
0: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
0: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
0: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
0: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए
0: अजीत जी। गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी,
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के

0: बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
1: आग बरसाती धूप।
2: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
3: क्यों?
2: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
3: अच्छा, तुमने खुद देखे?
2: हाँ।
3: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
2: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
3: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। अच्छा। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई। हाँ। और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं।

0: हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
0: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
6: साथियों भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा।

0: भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
1: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल

0: भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक है जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11:30 होने वाले हैं। अब से 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आइए फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर

नुमाइश एल्बम से पंकज उधास की आवाज में आपने सुनी ये गजल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मोइत्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

फैज अनवर ने इस गाने को फैज अनवर ने इस गाने को लिखा था। सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

0: किया है। कल वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टालें। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान कपड़ा फेरी वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 378 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रूपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच छिपाकर गांजा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन विश्वभर में नर्सिंग पेशेवरों के लिए बेहतर सहायता, सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता को बताता है। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृतक बच्चे के अंगों में बदलाव मिला है। उसका बिसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में बारिश में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है, जिससे कल कुछ इलाकों में विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 12 तस्कर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रूपये का गांजा बरामद। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 12 बजे हैं, अब से शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
2: श्री शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से 2 भाजपा के और 1-1 सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की 3री बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार 2री बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये

उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था। बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एसएन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थी। और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

Good. आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर. वेरी गुड आफ्टरनून. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए. तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ. तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं. चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है. इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है. फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है. तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं. और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप. हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं. तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है. और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती. आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाओं में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है. इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम, रात, आसमान, ख्वाब, उम्मीद, चांद, टिमटिमाते तारे और सूरज. तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग.

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीरकर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं है, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है। रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं। सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं।

वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ, सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूं मैं, और शामे दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया, लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है, लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी, तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है। संगीत में सफर का इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है, लगता है यज्ञ

सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहां मिलता है जहां हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट, और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह

आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो, अच्छा या बुरा, हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुंच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ो

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो ही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया, क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है, माता पिता के लिए गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता।

हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा। हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान, आप सभी को नमस्कार और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है और दोपहर के चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने

परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है, घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं, तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की। बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सबने इसका सन भी बताया कि किस

सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था, और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं जरा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई 2016 की है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है। संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, अब समाप्ति की ओर। क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल, आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती हैं। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি

0: প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করি।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं।

0: इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता

0: लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया

कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूं फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुन।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां

0: सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खासतौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकालकर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी शिक्षकों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं, क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं,
0: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी
1: हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी,
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
1: जी।
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
1: और
0: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं,
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है, तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं, आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
0: जी,
1: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
0: जी। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
1: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी, और पेड़ पौधों को लेकर उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और वो लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हो, या आपके बागीचे में लगे हो, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ को।
1: पता है जब हम गर्मी में

0: कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है।
0: और
1: और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है,
0: हाँ
1: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना, कई बार
0: लेकिन
1: ऐसा होता है।
0: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा। और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है,
1: जी
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं
1: सही के बाहर।
0: ताज़ा सांस लेने के लिए। वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं, हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था, और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं, ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं। और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है, अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ

प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहे। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।

0: जल्दी पचने वाले भोजन करें, प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके, तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंचाई
1: जी
0: है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास

0: तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी CEO है और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता

0: नहीं मिली उन्हें
1: जी। लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है,
0: क्योंकि जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली
1: जी। और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने यह समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
0: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया
1: जी। कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल,
0: हाँ
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
0: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता, तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
0: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे
1: जी। और वक्त हो चला एक गीत का
0: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
1: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब
0: हाँ
1: उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और
0: हाँ
1: फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह
1: बिल्कुल।
0: से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में

0: काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों को, जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा
0: इसी
1: हो रहा
0: तरह
1: है।
0: से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो

0: और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप अहमदनगर जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बार।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि

0: बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: गलियां।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
2: जी, जी।
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, जी। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। बड़ा नर्वस हुआ।

0: फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
0: नहीं,
1: हाँ
0: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
1: वाह, हाँ।
0: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है। अब अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारभेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ
0: नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, बोले क्या करे उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे

0: दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो, स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी,
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल देना पड़ता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग के मुझे

0: चिंता नहीं थी, मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं।
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक़ है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह। ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि

0: एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजने को हैं और लीजिए अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, कंडराजा, बैरडांड, दातीढाब, घटगांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, काकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, कूड़ेकेला, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारा

0: सामा, डूमरघाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
3: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस विषय पर हम परिचर्चा सुनेंगे। परिचर्चा में प्रतिभागी हैं श्री प्रथमेश मिश्रा और श्री रॉबिन पुष्प। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्री रॉबिन पुष्प। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं रॉबिन पुष्प आज आकाशवाणी पर आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपना एक छोटा सा परिचय भी दे देता हूँ। मैंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की है और उसके बाद अहमदाबाद से गांधी फेलोशिप और दिल्ली से राष्ट्रम फेलोशिप शिक्षा के क्षेत्र में करा है। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया और वर्तमान में ISPF बेंगलोर में हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स प्रोग्राम को छत्तीसगढ़ में लीड कर रहा हूं। और आज का विषय है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का स्वरूप। आज जो विषय हमने चुना है उसके लिए हमारे पास एक विशेष अतिथि हैं श्री प्रथमेश जी, जो एक पर्यावरणविद, शिक्षा चिंतक और नवाचारपूर्ण शिक्षा के समर्थक हैं। श्री प्रथमेश जी बिलासपुर में एक विद्यालय तथा मंडला के आदिवासी क्षेत्र में एक अन्य विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जहां वे बच्चों को फियर फ्री एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी, लीडरशिप डेवलपमेंट और वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाली शिक्षा देने पर विशेष जोर देते हैं। आज की इस चर्चा में हम केवल श्री प्रथमेश जी को ही नहीं बल्कि उनकी जीवन संगिनी और सहयात्री श्रीमती सविता प्रथमेश जी को भी श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहेंगे। सविता जी एक उत्कृष्ट शिक्षिका और शिक्षा विशेषज्ञ थी। तो अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। प्रथमेश जी, आपका स्वागत है।
5: नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी एक चर्चा होगी हम लोगों के बीच में।
4: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के इस प्रेरक स्वरूप को समझते हैं। तो प्रथमेश जी, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? जब हम शिक्षा कहते हैं तो इसके क्या मायने हैं?
5: मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं अपनी जीवन संगनी सविता के स्मरण करते हुए कहूंगा कि उनकी बातों को ही मैं रख रहा हूँ। वैसे सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, परंतु उसके साथ जो शिक्षक उनको देते हैं वो एक अलग चीज होती है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चों में शिक्षा की समझ विकसित हो। शिक्षा की समझ को हम समग्रता में देखना चाहिए, यानी कि शिक्षा की समझ से तात्पर्य है हम जीवन को समझें, कि हम लोगों को समझें, प्रकृति को समझें, संवेदनाओं को समझें, और सबसे प्रमुख बात है कि मूल्यों को समझें। ये शिक्षा का एक, मैं समझता हूँ, सार होना चाहिए और शिक्षा का सार निकल के आना चाहिए बच्चों के व्यवहार में, उनके बड़े होने पर उनके नागरिक व्यवहार में, जो आज हम देखते हैं कि नागरिक व्यवहार बहुत ज़्यादा कमी है।
4: बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आपने जरूर कुछ ऐसे शिक्षक देखे होंगे जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने उदाहरण से इस चीज को जिया होगा।
5: बचपन से ही जो हमको शिक्षक मिले, विषय के अलावा जो उनका व्यवहार, हमने छोटी छोटी चीजें देखी हैं, वो चीजें याद हैं। बचपन में प्राइमरी स्कूल में हमारे विष्णु खन्ना सर थे, जो कवि भी थे और उनकी कविताएं बहुत अच्छी थी। हम उनके घर जाते थे, बैठते थे, खाना खाते थे। ऐसे शिक्षक बहुत याद आते हैं हमको। मुझे याद आता है हमारे हाई स्कूल में एक पवार सर, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मेरे को प्रेरित किया था। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक थे।
4: एक और उदाहरण सविता जी के जीवन से भी, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा कि किस तरह से विद्यार्थी उनसे जुड़े रहते थे, किस तरह से वो उनको मेंटरशिप और गाइडेंस देती थी।
5: सविता का मैं कहूँ तो अभी तक मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। छोटी छोटी बातें याद आती हैं।

0: वो स्कूल में बच्चों के साथ जो भी लगाव था, बच्चे घर आते थे हर साल, उन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए बच्चों की फीस देना भरना वो तो उसका ही शिक्षक करते हैं। उसके अलावा उन्होंने समुदाय को जोड़ने की जो भूमिका थी, उस स्कूल को समुदाय से जोड़ा और समुदाय के लोगों को जोड़ के डॉक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, कई समितियाँ हैं, क्लब्स हैं, उनको जोड़ा, उनसे बहुत ज़्यादा स्कूल को सहायता मिली, बच्चों को गोद लिया गया, उनकी पढ़ाई, किताबें, ड्रेस वगैरह के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए। तो उनकी भूमिका को मैं देखता हूँ कि उन्होंने बच्चों को वहाँ पर बहुत जोड़ के रखा था। ये एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि समुदाय को भी स्कूल से जोड़े। जहाँ हम रहते हैं उस कॉलोनी के बच्चों की वो एक प्रकार से मेंटर थी, कई कार्यक्रम कर किए हमने बच्चों के लिए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया था।
1: तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, अप्रोचेबल हो जाता है, तो बच्चे उससे जुड़ते हैं और शिक्षा में सकारात्मक परिणाम आते हैं?
0: बहुत बढ़िया। शिक्षक को बच्चों का मित्र होना चाहिए, उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति होना चाहिए जिसमें बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें। जो बच्चे कहीं बाहर नहीं कह पाते, झिझक के मारे माँ बाप से नहीं कह पाते, अपने दोस्तों से तो कई बार झिझकते हैं बात कहने में, तो शिक्षक एक उनको सहारा देता है, एक छाता जैसा रहता है उनके ऊपर। कई बच्चे ऐसे शिक्षकों से अपनी घर की बातें, माँ बाप की बातें वो सब खुल के कहते हैं, तो ऐसे कई शिक्षक होते हैं जो ऐसा करते हैं, होना चाहिए संबंध।
1: बिल्कुल। तो साथियों, हमने यहाँ देखा कि शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा में तो है ही, प्राथमिक शिक्षा में ये और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह उम्र होती है बच्चों के भावनात्मक पक्ष के विकसित होने की, उनके इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, और यहाँ पे शिक्षक और बच्चे का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: मैं आपसे पूछना चाह रहा था रामिन
1: जी,
0: आप इसमें रिसर्चर के रूप में, शोध के रूप में आपने अनेक स्कूलों का करिकुलम वगैरह बनाया है, देश भर के कई स्कूल में आप गए हैं, तो मेरा कहना है बच्चों को माहौल कैसा होना चाहिए कि स्कूल का, कि जहां वो जा सकें और वो कर सकें।
1: जिस तरह की बात आपने सविता जी के संदर्भ में कही, वही चीज मैं देखता हूं कि उनके जैसे शिक्षकों का एक समूह जहां बन जाता है, वहां पे स्कूल एक आदर्श स्कूल बन जाता है। तो कृष्णमूर्ति स्कूल का मुझको ध्यान आ रहा है, ऋषि वैली स्कूल, वहां पे शिक्षक ही इस तरह से चयनित किए जाते हैं जिनका हो सकता है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग किसी किसी शिक्षक की कम हो या एवरेज हो, लेकिन व्यवहार के रूप में, उनका जो जीवन मूल्य है उस रूप में देखा जाता है कि एक अच्छे व्यक्ति हों, खुले मन के व्यक्ति हों, बच्चों के लिए अप्रोचेबल हों और बच्चों को सोचने समझने के लिए काफी स्पेस प्रोवाइड करते हों। और यही चीज मैंने पांडिचेरी में भी देखा, जो अरविंदो के स्कूल हैं वहां पे भी मैंने देखा कि एक कारपेंटर का भी उतना ही सम्मान है जितना एक साइंस टीचर का सम्मान है, जो कारपेंटरी सिखा रहे हैं और पॉटरी सिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको एक ही जैसा सम्मान, और उसमें क्राइटेरिया सबसे पहला ये कि वो व्यक्ति के रूप में अच्छे हों, ये मैंने देखा।
0: बहुत बढ़िया। आपने कई स्कूल देखे हैं, किए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, कि उनका कैसा अनुशासन रहता है, सुबह की शुरुआत या मॉर्निंग असेंबली कैसी होती है उनकी, या क्या होना चाहिए?
1: तो मैंने ये देखा कि जो स्कूल ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ योग या ध्यान जैसी चीजें हैं, वहां पे भी अगर अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं तो उनको यही सुझाव देते हैं कि आप किसी भी चीज को बच्चे के ऊपर थोपिए नहीं। मैंने देखा, मतलब मैं संस्थानों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसे संस्थान जिनको बाहरी दुनिया जानती है योग या ध्यान के लिए, वहां सुबह बच्चे के पास चॉइस होती है, उसको अगर योग नहीं करना तो नहीं करता है, उसको ये होता है कि सुबह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लें। तो मैंने देखा कि देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में बच्चों की ऑटोनॉमी का बहुत ध्यान रखा जाता है, किसी रिजिड शेड्यूल से उनको नहीं बांधा जाता, उनको विकल्प दिए जाते हैं, उन विकल्पों को चुन करके बच्चे शेड्यूल में रहते हैं। जैसे ऋषि वैली में मैंने देखा कि वीक में दो दिन ऐसा होता है, आधे आधे दिन, जब उनको कुछ नहीं करना रहता है, कुछ नहीं करने का पीरियड होता है,
0: ये होना चाहिए।
1: और पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चे आराम से अपना कार्टून बना रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। और वो मैंने फिर देखा कि बाकी भी कई स्कूलों ने इसको कॉपी किया है और अपने यहाँ लागू किया है, जब उनको बहुत मेहनत के शेड्यूल से निकल के कुछ नहीं करने के कुछ घंटे होते हैं।
0: मैंने भी अपने स्कूल में ऐसा किया कि एक दिन बच्चों को पढ़ाना नहीं है, खेलना है, जो करना चाहें वो करें।
1: जी, बहुत ही शानदार।
0: मेरा आपसे ये कहना था कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं पहली बार, उसके पहले वो समुदाय के रूप में जानते हैं अपने आस पड़ोस परिवार को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस का माहौल, वही उनके लिए समुदाय होता है, ये होता है। परंतु जब वो स्कूल पहुंचते हैं तब तो वहाँ अलग अलग समुदाय से शिक्षक आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तब वो बच्चा जिस प्रकार से उसका विस्तार होता है, तो वो एक सही मायने में समाजीकरण जो कह सकते हैं वो स्कूल जाके होता बच्चे का।
1: जी जी। बिल्कुल, इस चीज को अभी जो वर्तमान में एनसीएफ या उससे पहले एनईपी बना वो भी कह रहा है, और जितने भी

0: अच्छे स्कूल हैं वो भी इसी चीज की एडवोकेसी करते हैं कि बच्चे को विभिन्न संदर्भ और विभिन्न तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बैकग्राउंड के लोगों से जुड़ाव हो और वो उनके साथ रहते हुए जीना सीखें।
1: आपके जो शोध और आपके कार्यों से संबंधित मैं कुछ सवाल और पूछना चाहता हूँ, जो आप अच्छे से बता सकेंगे मैं समझता हूँ, कि आप जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है और मूल्यांकन उसका करते हैं, तो उसको आप कैसा देखते हैं पाठ्यक्रम को, पुस्तक आधारित या जीवन आधारित?
0: चूंकि आज का हमारा विषय प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो पहले मैं प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड
1: जी
0: ही बात
1: जी
0: करूंगा।
1: जी बिल्कुल
0: तो विषय तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, पर छोटी उम्र के बच्चों में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उनको किस तरह का हम सोचने समझने की हैबिट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटे बच्चे को अगर हम कहें कि तुमको अब लगातार घंटों लिखना और पढ़ना है, तो वो उसके साथ न्याय नहीं है। तो वहां बहुत जरूरी है कि वो अपनी बात कह पाए अपने साथियों से, अपने शिक्षक से, अपने घर पे, क्योंकि सबसे पहले उसका बोलना और सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना ज्यादा बोलने सुनने के अवसर दिए जाएंगे प्राथमिक लेवल पे, वही आगे जाता है, और बोलने और सुनने के साथ साथ करने के अवसर। तो सर, जैसा आपने बोला, सब्जेक्ट तो है इम्पोर्टेंट, नो डाउट, पर सब्जेक्ट के साथ साथ में हम कितना मौका दे रहे हैं उनको सुनने का, बोलने का, सोचने समझने का, हाथ से चीजें करने का, क्योंकि वो जो शुरुआती वर्ष होते हैं वो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जी,
1: समझ।
0: तो आपके स्कूल में भी इस तरह की चीजें होती
1: हाँ, हम
0: होंगी,
1: लोग करवाते हैं।
0: है ना? तो उसमें आपने फर्क भी देखा होगा कि बच्चे को जब हम मौका देते हैं, जब बच्चा खुद से कोई आर्ट कर रहा है, तो वो जल्दी हैंड राइटिंग पिकअप करता होगा। तो
1: बिल्कुल
0: इस तरह
1: बिल्कुल,
0: के कोई अगर आपके मेमोरीज हैं या इस तरह के कोई अनुभव हैं, तो प्लीज बताइए
1: हम
0: सर।
1: लोग बच्चों से पेंटिंग्स मट्टी सान के दे देते हैं,
0: जी
1: उस पे काम करते हैं बच्चे।
0: जी
1: हम बच्चों को जैसे बगीचे में ले जाना, फूल पत्तियों को छूकर देखना, ये
0: जी
1: सब करना, तो ये
0: हाँ
1: उनका एक डेवलपमेंट जो होता है, वो समझ डेवलप होती है,
0: हाँ
1: वो चीज हम सब।
0: क्या इस दौरान ऐसा भी देखने को मिला है आर्ट या नेचुरल चीजें करते समय में, कि बच्चे खुल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और इसका प्रभाव उनके पढ़ाई पे पड़ता है, वापस एनर्जाइज होके पढ़ने
1: हाँ
0: के लिए आते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: जैसे बीच में पढ़ाते पढ़ाते गैप दे दिए और बच्चे उसमें खेल रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं। हमने बच्चों को बोर्ड दे दिए, सिखाने वाले बोर्ड होते हैं मैडम वाले, वो छोटे बोर्ड नीचे लगा दिए हैं, तो बच्चे उसमें चाक से लिखते हैं, खुद टीचर बन जाते हैं, खुद वो करते हैं,
0: जी
1: तो खुद
0: जी
1: टीचर वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे खुद पढ़ाते हैं स्केल लेके, वह छोटे बच्चों को, दूसरे बच्चों को,
0: जी
1: तो ये एक उनका डेवलपमेंट जो है, और बड़ा उनको एंजॉय करते हैं बच्चे
0: जी
1: उस चीज़ों
0: जी
1: को।
0: ऐसा कुछ शोध में भी बताया गया है। क्रैशन है एक काफी मशहूर एजुकेशनिस्ट, वो भी बोलते हैं कि हम जब बच्चे को किसी भी मैकेनिकल एक्टिविटी में डालते हैं, तो धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उनको प्रकृति से जोड़ते हैं, बोलने के इस तरह के मौके देते हैं, सहज वातावरण बनाते हैं, तो उनके दिमाग में जो एक थकान है, वो थकान नहीं होती, और वो खुले मन से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं।
1: वही बच्चों का हम लोग ये चाहते हैं कि, और स्कूल का माहौल हम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे घर में स्कूल जाने के लिए उत्सुक हों, रोए नहीं स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाना है तो तैयार होकर खुद तैयार हो जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं,
0: जी
1: तो ये हमारे स्कूल में बच्चों का हम देखते हैं कि वो खुद तैयार होकर और अच्छे से थोड़ी खुशी खुशी स्कूल आते हैं।
0: तो प्रथमेश जी, अब हम अपनी बातचीत को समअप करते हैं। जो हमने तीन मुख्य बिंदु लिए, उसमें एक मुख्य बिंदु था कि शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा में, और खास तौर पे प्राथमिक शिक्षा में। उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, किस तरह का एटीट्यूड बिहेवियर होता है, किस तरह के जीवन मूल्य हैं, किस तरह से बच्चों के साथ सहज रहते हैं, बच्चों के आनंद में आनंदित होते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से कोई रिजिड करिकुलम अगर होता है प्राइमरी लेवल पे, मैकेनिकल होता है, तो वो बच्चों को थकाता है, पर अगर कोई ऐसा करिकुलम होता है जो नेचर से जोड़ता है, कला से जोड़ता है, बहुत सारी गतिविधियां करने के लिए देता है, तो अच्छा रहता है। अब अगले क्रम में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि समुदाय को आपने स्कूल से कैसे जोड़ा, और आपके अनुसार स्कूल और समुदाय का रिश्ता कैसा होना चाहिए।
1: देखिए, सविता जी ने तो जो किया अपने स्कूल में समुदाय को जोड़ने के लिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने स्कूल में कोई भी जो कार्यक्रम होते हैं गांव में, जो स्कूल है उसमें ग्रामवासियों को एक कमेटी बना के स्कूल से जोड़ा हुआ है। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें गेस्ट के रूप में गाँव से जो भी हेड वगैरह हैं, सरपंच वगैरह हैं, या दूसरे जो वरिष्ठ नागरिक वगैरह हैं, उनको हम रेगुलर बुलाते रहते हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासी भी गाँव हैं तो उनकी जो परंपराएं हैं वो ना खत्म हो, वो परंपराएं, उनकी भाषा जो है वो बच्चे सीखते हैं।
0: यहां मेरे ध्यान में एक बात आ रही है कि वहां जरूर कोई स्थानीय भाषा होती होगी, और फिर वहां पे आप हिंदी और अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं,
1: जी
0: तो ये बहुत अच्छा है कि चूंकि स्थानीय

0: लोग स्थानीय संस्कृति, स्थानीय त्योहार को आप मनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय भाषा का भी सम्मान होता होगा,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना? और किस तरह के अनुभव आपको हुए, मतलब जहां पे आपने बच्चों की स्थानीय भाषा का भी सम्मान किया, संस्कृति का भी किया, और फिर आपको देखने में आया कि बच्चे इस तरह से भी सहज रूप में हिंदी या अंग्रेजी सीख गए, ये इस तरह के अनुभव देखने में आए हैं क्या सर?
1: हाँ, बच्चे जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं तो उन्होंने जो देखा अपने घर में और आसपास में, जिस प्रकार से नाच गाना या वो उनके परंपराएं होती हैं, उन्हीं को हम स्कूल में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़े खुशी मन से वो चीज़ें करते हैं उन लोग, और फिर वो जब वो खुश रहते हैं स्कूल से और अच्छे हैं, तो हम जो कुछ चीज़ें सिखाते हैं हिंदी या अंग्रेजी, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं बहुत।
0: क्या इसमें आपने मैं ये क्वेश्चन क्रिटिक करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, पर आमतौर पे मेन स्ट्रीम कई स्कूलों में ऐसा होता है, सभी में तो नहीं कहूंगा, कि माना जाता है कि नहीं, बच्चे को जितनी जल्दी इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाए उतना अच्छा है, या फिर समुदाय के लोगों की इतनी भागीदारी नहीं होती। तो आपको लगता है कि अगर हम स्थानीय भाषा और लोगों का सम्मान करते हैं तो इससे मनोवैज्ञानिक असर होता है बच्चों के ऊपर, उनके स्वाभिमान में, उनके स्कूल और शिक्षा से जुड़ाव में?
1: बिल्कुल, अंग्रेजी को आज की तारीख में हम नकार नहीं सकते। उससे चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या दूसरी भाषा हो, जब उन भाषा के बोलने वालों के बीच बच्चा पहुंचता है या वो होता है, तो उसमें अगर वो भाषा के उसमें पारंगत है तो उसमें अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए भाषा सीखने से। वो छोटे बच्चों के बारे में मनोवैज्ञानिक और रिसर्च में भी ये सिद्ध है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी ही कई भाषाएं सीख लेते। तो हमारी कोशिश रहती है कि वो अपनी भाषा भी सीखें और हिंदी अंग्रेजी भी उसी प्रकार से सीखे।
0: तो जब इस तरह से समुदाय का सम्मान आप करते हैं, तो क्या आपको यह भी देखने में आता है कि समुदाय भी अपनी तरफ से स्कूल के लिए छोटा ही सही योगदान करता है कुछ?
1: समुदाय की जो भूमिका, बच्चे जो सीखते हैं स्कूल के अलावा जो समुदाय से सीखने वाली बात है, तो हम पीछे थोड़ा सा पीछे जाएं तो लॉकडाउन जो लगा था, लॉकडाउन ने बच्चों को बहुत शिक्षित किया। भले स्कूल नहीं गए, परंतु उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कम उसमें भी रहना, मित्रता करना, खाना बनाना, शारीरिक श्रम करना, ये उन्होंने अपने घरों में सीखा। उन्होंने ये देखा, पढ़ा, टीवी में देखा, समझा, सोशल मीडिया में, कि लॉकडाउन में जो हजारों लाखों मजदूर कई किलोमीटर पैदल चल चल के आए और गए, तो उनको लिए जो लोगों ने, समुदाय ने रात दिन भिड़कर उनके लिए खाना, रहना और नाश्ता पानी की व्यवस्था की, घर जाने की व्यवस्था की, निस्वार्थ सेवा का जो देशव्यापी ये उदाहरण मिले, उससे बच्चों ने जो सीखा वो उनको कितना भी पढ़ा दीजिए, उपदेश दे दीजिए, उससे नहीं सीखा जो उन्होंने देखकर सीखा।
0: बिल्कुल, लाइफ एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट टीचर।
1: यस,
0: तो इस तरह की परिस्थिति में अभी ऐसा सही में देखने आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो अनुभव रहा कोविड का, उसके बाद उनका टाइम का सेंस बदल गया है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों ने भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, भले ही वो इसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर उसके अपने रेलिवेंस है। तो सर, मैं वापस आता हूं, जब हम बात कर रहे थे समुदाय और समुदाय से जुड़ी हुई भाषा की, अब मैं यहां सीधा सीधा समझना चाह रहा हूं आपसे कि प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बहुभाषिकता की क्या भूमिका है, क्या ऐसा है सच में कि मातृभाषा को सम्मान मिलता है, हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं तो जल्दी पिकअप करते हैं बजाय इसके कि उनको गणित भी इंग्लिश में सिखाया जाए। तो मैं भाषा पे आपके विचार जानना चाहूंगा, भाषा शिक्षण कैसा है प्राथमिक में और क्या उसके उद्देश्य होते हैं, क्या प्रैक्टिकल
1: मैं
0: इम्प्लीकेशन
1: इसमें उल्लेख करना चाहूंगा, सविता ने इसके ऊपर अपना उनका शोध था, तो विषय विशेष की सीमाओं के बीच जब भाषा शिक्षण की बात होती है, तो अपनी सीमाओं के साथ यह विषय इस बात में समृद्ध है कि यह साहित्य को तो समाहित किए ही होता ही है, साथ ही यह विज्ञान, गणित, कला, ललित कला समेत अनेक विषयों के साथ चलता रहता। वास्तव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर ही साहित्य से अगर हम बच्चों को परिचित कराएं तो उसका सकारात्मक असर होता है बच्चों में। छोटी छोटी कहानियां हैं प्रेमचंद वगैरह की और दूसरी हैं, तो उनको सिखाएं तो पढ़ाएं तो वो बच्चे जीवन को समझने लगते हैं, नमक का दरोगा हुआ, ये सब जीवन के कई चीजों को समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण और आरंभिक साहित्यिक गतिविधियों की जब बात की जाती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है बच्चे किसी बात को सुनकर समझ जाए, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाए, सुनी बातों को लिख पाए, व्याकरण का उपयोग कर पाए। इसमें यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहती है कि भाषा की शिक्षा अनूठे अवसर देती है, भाषा मूल्यों का संचार है, अलग अलग भाषाओं से और उसकी मुहावरे, कहावतें, कहानियां सीखते हैं तो उनसे उनका एक अलग ही विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण और आरंभिक साहित्य गतिविधियों से आशय है कि बच्चे अपनी कहानी, कविता, निबंध सुन सकें, अपने घर में जाके अपने दोस्तों को बता सकें,

फिर उसको रिपीट कर सकें, जिससे फिल्म देखने के बाद बच्चे या कोई व्यक्ति उसकी कहानी सुनाता है, स्टोरी सुनाता है, लाइक दैट पढ़ सकें और लिख सकें। इन चार कौशलों में से वाचन और लेखन अभिव्यात्मक कौशल है, जिनके प्रयोगों से भावों और विचारों को व्यक्ति दी जाती है। जो विद्यार्थी इन कौशलों के विकास के साथ भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम में साहित्य की विविध विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य के साथ साथ यह भी होता है कि विद्यार्थी साहित्य की विधाओं में अंतर स्थापित कर सकें। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सौंदर्य बोधात्मक क्षमताओं का विकास भरपूर अवसर उनको मिल सके।

0: विकास है वो।
1: बिल्कुल,
0: किसी विषय पर निबंध, कहानी, कविता, या कहीं गए तो उसका अपना टूर का ऑब्जर्वेशन, घूमने का चित्र देखकर कहानी लिखना, पत्र लिखना, यह सब उनके डेवलपमेंट में विविध विधाओं को, ये क्षमता है उनकी। भाषा शिक्षण की विशेष रूप से जब प्राथमिक स्तर की बात की जाती है तो उसमें भी साहित्यिक अभिव्यक्तियों के संदर्भ में तो बहुभाषिकता एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में सामने आता है। अगर बच्चों को हम प्राथमिक स्तर पर या छोटे स्तर पर भी अलग अलग भाषाएं सिखाएं तो बहुत जल्दी वो ग्रास्प करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और बोलते हैं उस चीज को, रिफ्लेक्ट करते हैं
1: जी।
0: बच्चे बोलते हैं ना, नकल करते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो नकल करने की आदत ही उनकी वो आगे बढ़ाती है उनको।
1: जी, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, एक बहुत ही मशहूर रिसर्च है कमिंस का, उन्होंने भाषा को ऐसे L1, L2, L3 में देखा, तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी बच्चे की L1 यानी उसकी जो मूल भाषा है उसको ठीक से विकसित नहीं होने देते और सीधा उसको L2 या L3 सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझने में भी परेशानी होती है और अभिव्यक्ति में भी परेशानी होती है। तो कोई एक भाषा जो है वो ठीक से सीखना, उसमें समझना, खुद को अभिव्यक्त करना, दूसरे को सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने हमको अवधारणा दी, एक सिद्धांत दिया कि मूलतः हम वास्तविकता को समझ रहे हैं, अपने आसपास की रियलिटीज को समझ रहे हैं। उसके लिए अगर हम उसको एक भाषा में समझ लेते हैं तो हम कई भाषाओं में वो बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और सुन सकते हैं।
0: अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर लागू किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी जी जी,
0: बच्चों को मिक्स तरीके से पढ़ाना, उनकी भाषा में पढ़ाना और उसके साथ साथ अंग्रेजी या हिंदी के
1: जोड़ते रहना,
0: तो बच्चे बहुत जल्दी उस चीजों को पकड़ते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से पूर्णतः सहमत हूँ। इसी के साथ में हम आते हैं पढ़ने की आदतों के बारे में, पर उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, अभी एकदम से ध्यान आया, आपने चूंकि बहुत लंबे समय तक अपने कम्युनिटी में लाइब्रेरी चलाई है, परिवार और आसपास के बच्चों को आपने देखा है, पढ़ने के मौके दिए हैं, अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया, वो बच्चे बड़े हो गए, तो आपने देखा होगा कि पढ़ने की वजह से किस तरह की सेंसिटिविटीज आई बच्चों में। आज के समय में इसको और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है कि बच्चे मोबाइल से निकल के अपने विचारों को देखें, दूसरे लोगों के विचारों को गौर से देखें और इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में नए अर्थ गढ़ें, नए तरह की संवेदनशीलता गढ़ें। एक चीज और पूछ रहा था कि जब बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, आपने देखा होगा वो नई तरह के शब्द भी सीखते हैं और नई तरह के संदर्भ भी सीखते हैं, ये तो आपने समाज में भी देखा होगा,
0: बच्चे है ना,
1: तो ये होता रहता होगा उनके साथ में। और जब आप उनको कोई नाटक या कोई कहानी लिखने के लिए बोलते होंगे तो जो कुछ उन्हें पढ़ा है उसका असर उस पे दिखता होगा।
0: बिल्कुल, मैं ये बताऊं, सविता ने एक प्रयोग कहना चाहिए, जो कॉलोनी के बच्चे आते थे
1: हाँ।
0: उनको रखा के एक बैल रख दिया उनके सामने, मिट्टी का बना हुआ बैल, अब बोले इसके बारे में कुछ भी लिखो, फिर बच्चों ने लिखना शुरू किया तो उसके शारीरिक संरचना और उसके कामों के बारे में लिखना शुरू किया। दूसरे दिन सविता ने कहा उनसे कि अब इस पर आप लोग एक कहानी लिखिए। अब कहानी की बात आई तो बच्चे सोच में पड़ गए, फिर बच्चों ने उस बैल के माँ बाप, उसके मालिक, किसान, काम धाम, इसको लेके कहानी गढ़ना शुरू किया।
1: इसमें मुझको एक और ध्यान आ रहा है, चूंकि आप अपने स्कूलों में लगातार बहुत सारे गेस्ट, आपके यहाँ मैंने देखा है कुम्हार भी आते हैं, आपके यहाँ मैंने देखा है कि अलग अलग प्रकार के कलाकार आते हैं, तो एक व्यक्ति भी एक किताब होता है जब बच्चों से उनसे बात करते हैं, उनके साथ कोई गतिविधि करते हैं, इसका अनुभव के बारे में बताइए कि लोगों से कैसे बच्चे सीखते हैं, लोगों को कैसे पढ़ते हैं वो।
0: पहले तो थोड़ा सा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कर रहा है सामने वाला, क्या नई चीज लाया है, क्या है, उसके बाद वो उनसे जुड़ता है, वो धीरे धीरे उनसे फिर वो क्वेश्चन आंसर करता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, इस प्रकार से बच्चों का होता है।
1: तो हमने प्राथमिक शिक्षा के अलग अलग मुद्दों को समझने की, चर्चा करने की और उस पर सहज संवाद करने का प्रयास किया। हमने यहाँ पे देखा कि प्राथमिक शिक्षा में किस तरह से बच्चों को समझने का और शिक्षक की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये भी देखा कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी शिक्षा की एक अपनी बुनियादी समझ होनी चाहिए। साथ में हमने ये देखा कि जो पाठ्यक्रम है उसको भी बहुत रिजिड नहीं देख सकते प्राथमिक शिक्षा में, और उसको बहुत फ्लेक्सिबल नेचर से जोड़ करके रखने की जरूरत है, जैसी बात टैगोर कहा करते थे। और साथ ही प्रथमेश जी के विचारों से या सविता जी के विचारों से मुझको गांधी जी की भी याद आ रही थी कि हमको अपने शिक्षा को जीवन उपयोगी कौशलों से भी जोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरह से शिक्षा को भविष्य के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो शिक्षक इतनी खुली भी होनी चाहिए कि वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित करते चली जाए, आने वाले जो भी टेक्नोलॉजीज हैं या अंग्रेजी भाषा है उसको भी सीखे, पर साथ में अपनी संस्कृति से भी बच्चे जुड़े रहें, अपनी स्थानीयता से भी जुड़े रहें और अपना एक स्वत्व बनाते हुए बच्चे आगे बढ़ें।
0: मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, एक पुस्तक पढ़ी थी बच्चे

0: असफल क्यों होते हैं। जो एक सामान्य धारणा है कि बच्चे फेल हो गए, बच्चा ये नहीं कर पाया, बच्चा वो नहीं कर पाया, तो उसके उलट ये देखना चाहिए कि बच्चा असफल नहीं होता है, असफल हम होते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चों को समझने में हम कई बार असफल होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं, किस तरह से उनको वो विचार आ रहे हैं, क्या परिस्थिति महसूस कर रहे हैं, और फिर हम सही युक्ति वहां पे उनके साथ नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, सही तरह के समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। कहीं पे भी ऐसा हम नहीं कह सकते, वो बहुत छोटे हैं और उनके वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें उनको सही तरह का वातावरण दिलाना, सही तरह की एक्टिविटीज कराना, सही तरह से टीचर उनके सामने प्रस्तुत हो पाए, ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो खूब अच्छी बातचीत रही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनुभव अपने शेयर किए। आगे की बातचीत में हम उम्मीद करेंगे कि और भी बहुत सारे नए संस्मरण, नए अनुभव सुनने को मिलेंगे। तो मैं पुनः आपका आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
0: धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, और ये संवाद जगह जगह होने चाहिए, मेरा तो कहना ये है।
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू, धन्यवाद।

0: अभी विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे परिचर्चा, प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। इस विषय पर परिचर्चा में प्रतिभागी थे श्री प्रथमेश मिश्रा और श्री रॉबिन पुष्प। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री रॉबिन पुष्प। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:35 हुए हैं और अब लीजिए हम प्रसारित कर रहे हैं महिला श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा।

0: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा और मैं हूं आपकी रेडियो सखी गीता होता। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को सीधे से जुड़ा हुआ होता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क केवल यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का रास्ता भी है। थोड़ी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहनों, आजकल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन लाखों लोग सड़क पर सफर के लिए निकलते तो हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसकी वजह है हम सब स्वयं होते हैं। कारण है तेज गति से गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, हेलमेट ना पहनना या फिर हम ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना। बहनों, इसकी वजह से केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। कई घरों की खुशियां सहारा पल भर में उजड़ जाती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने का माध्यम भी है। बहनों, हमारे बीच एक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण जीवन भर का दर्द हो जाता है। अक्सर हम समाचारों में, अखबारों में पढ़ने व सुनने को मिलता है कि आज एक युवक की सड़क दुर्घटना से मौत हो गई। कारण होता है तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या कम उम्र में गाड़ी चलाना या फिर हम मोबाइल से बातें करते समय गाड़ी चलाना और उस बीच गाड़ी के सामने या ट्रक आ गई है या पेड़ से टकरा गई या ब्रेक फेल हो गया और फिर या तो वह युवक जान गंवा देता है या शारीरिक अपंगता को साथ लेकर जीवन भर जीता है। बहनों, कारण है जागरूकता की कमी। तो आइए जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के कुछ महत्व नियम है। पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हेलमेट और सीट बेल्ट हमें उपयोग में लाना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। अगर लाल बत्ती पर रुके हैं तो हरी बत्ती पर चलें। जल्दबाजी कभी कभी जिंदगी छीन लेती है। बहनों, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नशे में वाहन ना चलाएं, गति सीमा का पालन करें। सड़क सुरक्षा केवल वाहन चालक की जिम्मेदारी नहीं है, पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और यात्रियों का कर्तव्य है कि वो नियमों का पालन करें। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम जरूर सिखाएं। जब हर नागरिक जिम्मेदार बनेगा तभी सड़क सुरक्षित बनेगी। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं, सुरक्षा नियम बोझ नहीं, सुरक्षा कवच है। नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यह केवल नियम नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। तो बहनों, अब आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में, जो फोन पर आधारित कार्यक्रम है और हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम यादव, आयुष चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ हैं और चर्चा का विषय है आंखों की देखभाल हम कैसे करें। सखियों, आंखें हमारे शरीर का अनमोल उपहार है जिनके माध्यम से हम इस खूबसूरत संसार को देख पाते हैं, लेकिन आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का बढ़ता उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में आंखों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम यादव, जो हमें आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखें इस बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। आज हम यहाँ उपस्थित हैं अपनी आंखों की समस्याओं का कैसे हम समाधान करें और उसकी कैसे देखरेख करें। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: जी, मैं डॉक्टर पूनम यादव, आयुष मेडिकल ऑफिसर पामगढ़ से।
0: जी,
1: मैं आज आंखों के बारे में कुछ ऐसा बात करना चाहूंगी। आंखों को बचाना, सुरक्षित रखना ये अत्यंत आवश्यक है।
0: जी,
1: क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो देखने की क्षमता को प्रदान करती है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है और आंख केवल देखने का साधन नहीं है बल्कि हमारे भाव को व्यक्त करने का भी एक माध्यम है, इसलिए हमें विशेष देखभाल करनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे हैं, सभी जो पेरेंट्स हैं अभी बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते अपने वर्किंग लाइफ में, तो उन्हें वो फोन दे देते हैं। आज पहले हम बाहर खेला करते थे, पर अभी क्या है, बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाता है जो वो पास से देखते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनके क्या है, आंखों में ड्राइनेस होना, बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, लालिमा पड़

0: जाना इस तरीके से बच्चों में भी आजकल ज्यादा देखा गया है।
1: जी
0: और इस वजह से नुकसान इतना ज्यादा होता है कि बच्चों को अभी से चश्मे लग जा रहे हैं और बाद में मोतियाबिंद होने के चांसेस रहना, कैटरेक्ट ये सब होना काफी कॉमन हो गया है।
1: जी जी
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ हेलो जी, स्वास्थ्य वार्ता क्रम में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका?
2: जी मैं राजकिशोर नगर से निमिषा सिंह बोल रही हूँ।
1: जी निमिषा जी, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पूनम यादव जी, जो हमें आंखों की सुरक्षा और उन्हें कैसे हम देखभाल करें सारी चीजों की जानकारी आज हमें देने जा रही हैं। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं आप डॉक्टर पूनम यादव जी से बात कर सकती हैं। जी आप बात करिए।
0: जी नमस्कार, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
2: जी नमस्ते मैम। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ
0: जी
2: कि ये कैटरेक्ट के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
0: जी कैटरेक्ट में जनरली क्या होता है, एक ही सामान्य रोग है आज के टाइम में, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है 50 से 60 की उम्र में। लगभग हमें हर 10 से 15 लोगों के बीच में ये देखने को मिलती ही मिलती है। और इसमें धुंधलापन, आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, रंगों का थोड़ा सा फीका दिखाई देना, इस तरह की हमको समस्या दिखती है। बहुत से पेशेंट रहते हैं जिनको रात में देखने में भी दिक्कतें होती है, अंधेरापन जैसा लगना और बार बार चश्मा का नंबर बढ़ते जाना। और किसी किसी को फैमिली में भी अगर डायबिटीज हो पहले से और पेशेंट को ना भी हो तो भी ये समस्या उनमें देखी गई, क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री में भी रहा। और बढ़ती उम्र के कारण ये सभी चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो काफी धूप में रह के लंबे समय तक यूवी रेज के कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनके साथ भी ये देखा गया कि उनको कैटरेक्ट की समस्या ज्यादा होती है।
2: अच्छा मैडम मैं ये पूछ रही थी कि इसमें कैटरेक्ट हो भी गया है तो उसके जैसे ऑपरेशन करते हैं तो फिर कितने समय बाद हमको उसके आराम मिल जाता है? मैडम हॉस्पिटल से ये ड्रॉप डालो ये जो भी उसके लिए डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरी जो मेरी अम्मा जी हैं उनको ये अभी समस्या है मैडम कि उनका ऑपरेशन कराना उनको डर रहता है मन में।
0: देखिए इसका ऑपरेशन कराने में बहुत जल्दी ही इसमें हमको आराम मिल जाता है, पर ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट इसमें काफी देर ध्यान नहीं देते हैं। जो उनको डॉक्टर बताते हैं कि आप इस तरीके से ध्यान रखिए, धूप से बचाव रखिए, चश्मे वगैरह प्रॉपर अच्छे से पहनिए, जो हम जो ब्लैक वाला फ्रेम कहते हैं ना पहनने के लिए, वो सारी चीजें, क्या आप ये सब चीजों का ध्यान दीजिए और वो देते नहीं है। तो कभी कभी कुछ पेशेंट ऑपरेशन कराने के बाद भी उनको तकलीफें बढ़ने लगती हैं। ये जनरली सबको नहीं होता है, इसके अच्छे रेट्स हैं कि जिसमें वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
2: ठीक मैम, ठीक, बहुत अच्छी आप बताई है, ताकि मैं जल्दी ऑपरेशन के लिए बोलूंगी मैम।
0: बिल्कुल
1: जी निमिषा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा।
2: जी
1: बिल्कुल जी। तो निमिषा जी घबराइए मत और आप अपनी मम्मी को समझा दीजिए कि ऑपरेशन आजकल आधुनिक पद्धति से होता है, तो इससे कोई ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो अच्छी हो ही जाएंगी। जी आपने कॉल किया इसके लिए धन्यवाद।
2: जी निमिषा जी, मैडम जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी पूनम जी, ऐसी काफी समस्याएं होती हैं जो बिना जानकारी के लोगों में ये सब भय बना हुआ होता है। हम शरीर के किसी भी अंग के ऑपरेशन की बात करें तो एक थोड़ा सा डर तो बना ही रहता है। तो पूनम जी मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आजकल की जो आधुनिक दिनचर्या है और उसमें बड़े तो बड़े ही पर बच्चे भी जन्म लेते ही कुछ साल बाद चश्मा लग जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: जी इसका कारण कोई एक नहीं है, दो तीन प्रकार से है। कभी देखिए ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो माता है वो अपना अगर अच्छे से सही से खान पान का ध्यान नहीं रखे, अगर वो आयरन के टैबलेट, कैल्शियम के टैबलेट, जो मल्टीविटामिन उनको समय से लेना चाहिए था, अगर वो समय से ना ले तो होने वाले बच्चे पे नर्व डिफेक्ट वगैरह ये सारी चीजें, और बहुत ज्यादा अगर बच्चा कमजोर पैदा हो तो उसमें ये देखने को मिलता ही है।
1: और इसके अलावा ये मैं जानना चाहती जैसे अभी आपने कहा कि विटामिन की गोली नहीं खा रहे हैं या फिर, तो विटामिन्स की गोली ना खाने के बाद अगर हम कोई पौष्टिक आहार लें तो ऐसे कौन कौन से पौष्टिक आहार हैं जो गर्भवती महिलाएं भी लें और सामान्य जो महिलाएं हैं वो इसको लें और उनकी आंखें स्वस्थ रहें? मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे पौष्टिक आहार हैं जिसे उन्हें लेना चाहिए।
0: जी देखिए पौष्टिक आहार में हम हमेशा सभी से सुनते हैं कि विटामिन ए खाइए, विटामिन ई लीजिए, ये सब हम सबसे सुनते रहे कि गाजर खाओ तो इससे अच्छा रहेगा, ये सब लेते रहो तो आंखें अच्छी रहेंगी, पर बस इतने में ही कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल के क्या है खाना पीने में सब ध्यान देते हैं, क्योंकि इतने सारे एआई के पूरे जमाने आ गए हैं, सब फोन में ही अपने को पूछ पूछ के देखा करते हैं कि हम क्या ले सकते हैं क्या खा सकते हैं।
1: हाँ पूनम जी लगता है अभी कॉलर्स हमारे जुड़ गए हैं।
0: अच्छा
1: जी, हेलो हेलो
2: हेलो हेलो, हाँ जी,
1: स्वास्थ्य वार्ता क्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रही है?
2: जी शुक्रिया, मैं ललिता मनोज बोल रही हूँ बिलासपुर से।
1: जी तो ललिता जी, आप

0: क्या जानना चाहती है? आज हमारे बीच है डॉक्टर पूनम यादव जी, और जो आंखों की समस्याओं का समाधान करने जा रही है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती हैं। जी
1: जी पूनम मैम को सबसे पहले मैं नमस्ते बोलना चाहूंगी।
0: जी नमस्कार
1: मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो मोतियाबिंद है मैम, ये तो हम जानते हैं, बहुत इसके बारे में सुने भी हैं, ये केवल मैम बुजुर्गों में ही होता है या युवाओं को भी हो सकता है?
2: जनरली ये देखा गया है कि 40 के एज के बाद के ही लोगों में ज्यादातर होता है, पर कुछ जो ऐसे हैं कि अगर ध्यान समय से ना दे या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से ही डायबिटीज या कैटरेक रहा है, तो ऐसे कुछ पेशेंट में ये देखने को मिलता भी है।
1: अच्छा जी मैम, और यदि इसका हम सही समय पर इलाज नहीं कराएं तो क्या आंखों को नुकसान पहुंच सकता है मैम?
2: बिल्कुल, इसमें आंखों को नुकसान पहुंचता है और आंखों की जो नस है वो सूख जाती हैं, और बाद में यही कुछ पेशेंट को रेटिनोपैथी या ग्लैकोमा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है अगर वो समय रहते ध्यान ना दें या डॉक्टर से सही समय पे परामर्श ना लें।
1: जी मैम, एक परिचित है वो भी ये जानना चाह रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सही तरीके से हो गया तो उसके बाद मरीज को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए?
2: जी अधिकतर देखिए, आप जब भी अपने डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो हमेशा ये बताते हैं कि बाद में हमें हमेशा तेज रोशनी यूवी रेस वगैरह जो है उनसे बच के रहना चाहिए। खाने पीने का बहुत अच्छे से संतुलित आहार लेना चाहिए। विटामिन ए के जितने चीजें हैं, गाजर हो गया, ओमेगा 3 हो गया, जैसे हमारी फ्लैक्स सीड हो गया, और अपने वॉलनट्स हम जो लेते हैं ना, अखरोट, ये सब खाने के लिए ज्यादा बोलते हैं। तो हम अगर अपने खान पान को सही से रखें तो हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से सही समय पे कंट्रोल भी कर सकते हैं।
1: जी जी मैम, जी मैम।
2: तो उन्हें समय समय पे इसीलिए कहा जाता है कि आप उसको हाइड्रेट रखें और समय समय पे आंखों पे आई ड्रॉप डालते रहें।
1: जी मैम, और कितने समय के बाद मैम घर से बाहर निकल सकते हैं?
2: ऐसा कुछ नहीं है, आप आधे से एक घंटे बाद भी निकल सकते हैं, पर जो अगर ऑपरेशन करा चुके पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उनको ये कहा जाता है कि आप दिन के धूप में बचें, क्योंकि धूप की तेज रोशनी आंखों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा पैदा करती है, और यूवी रेज आंखों की रोशनी के लिए अच्छी नहीं है।
1: जी थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: जी जी ललिता जी, लगता है आप अपनी समस्याओं का समाधान पा चुकी हैं। जी
1: शुक्रिया गीता जी।
0: जी ललिता जी, और आपने कॉल किया इसके लिए धन्यवाद। पूनम जी, आजकल लोगों में जागरूकता इस बारे में काफी कम है और एक डर तो अभी भी बना हुआ है, और जैसे वो बता रही थी कि इरिटेशन होता है, आंख में लाल पड़ जाना, उसके बाद काफी उनमें मतलब एक कंफ्यूजन था, और ऐसे काफी लोगों में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति को भी इचिंग होती, इरिटेशन होती है, उसके बाद लाल हो जाता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है?
2: इसकी वजह ये रहती है कि धूल बाहर बहुत ज्यादा है, या हमारे जो पसीने हैं ये कभी आंखों में पड़ जाते हैं, तो इस वजह से हमको इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है। और जो यूवी रेज हैं उसके लिए हम यही बोलते हैं हमेशा पेशेंट्स को कि आप अच्छे से ग्लास पहने, अच्छे मोटे वाले, जो प्रॉपर 90-99% यूवी रेज से हमको बचाव करें। तो ये सब अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो इरिटेशन या दिक्कतें जाती है वो ना जाए।
0: जी तो पूनम जी, हम बात कर रहे थे कि आंखों की हम नियमित देखभाल कैसे करें और क्यों जरूरी है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर बाहर जा रहा है, धूप में निकल रहा है, और खासकर गर्मी के दिनों में उन्हें कुछ लालिमा सी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आंख में सूखापन, भारीपन, या कभी ऐसा भी होता है कि आंख अच्छे से खोल नहीं पाता है,
2: जी,
0: तो इसकी वजह क्या हो सकती है और उसमें हमें क्या सावधानी रखें?
2: जी इसके लिए यही है कि आप अपने आंखों को नियमित अच्छे से वॉश करते रहें पानी से, अच्छे ठंडे पानी से धोएं, और खाना पीना बहुत अच्छे से रखें
0: जी,
2: और साथ ही कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनग्लासेस प्रॉपर अच्छे वाले पहन के रहें, और खाने पीने का आप अच्छे से ध्यान रखिए, और कभी भी कोई ऐसा समस्या लगती है या हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग डरे हुए रहते हैं कि कुछ हो मत जाए, आंखों में अचानक से धुंधलापन अगर आ गया इस तरीके से, तो बीच बीच में अपने को डॉक्टर के पास जाके अपने नेत्र रोग जो भी डॉक्टर है उनसे जाके सलाह मशवरा करना चाहिए कि ऐसे कोई डरने या घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि जो ग्लोकोमा वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके साथ यही होता है, वो समय रहते अपना ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे धीरे मेडिसिन लेते लेते उनका काम तो चलता रहता है, पर बाद में उनको तकलीफें बहुत ज्यादा जाती हैं, तो अगर समय रहते ध्यान दे तो बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं।
0: जी पूनम जी, आपका कहना है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी आंखों की देखभाल करे, और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो अपनी आंखों की समस्याओं को नजरअंदाज ना करे।
2: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल पूनम जी। और जैसे अभी आपने एक शब्द यूज किया है ग्लूकोमा, मतलब जब पता चलता है लोगों को कि उनकी आंखों में ग्लूकोमा हो गया है तो उस वक्त काफी लेट हो गया होता है, तो वो समय से पहले ही इन चीजों को कैसे

0: जान जाएगा, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोमा के?
1: सिम्टम इसके जनरली इधर जब हमें कैटरेक्ट होता है या आंखों में बहुत ज्यादा धुंधलापन दिखाई देता है, कभी कभी आप जैसे कभी शाम को चल रहे हैं तो अंधेरापन ज्यादा लगना, कभी कुछ पेशेंट्स को लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है क्या, अचानक से ऐसा हुआ होगा, नजरअंदाज बहुत करते हैं उसको। तो अगर अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये तकलीफें धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि ग्लूकोमा की जो तकलीफें हैं अधिकतर अगर हम देखा जाए तो 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता कि उनको इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है
0: जी।
1: वो उसको ऐसे ही नजरअंदाज करते हैं, आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होना, बहुत इरिटेशन होता है उस समय, तो वो सिर्फ आंखों को धो लेते हैं या सिर्फ आई ड्रॉप डाल लेते हैं नॉर्मल मेडिकल से लाके, पर डॉक्टर के पास वो नहीं जाते। अगर वो सही समय पे जाएं, आई चेकअप अपना टाइम टू टाइम करें, बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको चश्मे लगे रहते हैं, वो ज्यादा चश्मे लगाते भी नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं अपना, टीवी वगैरह देखेंगे या कुछ भी अगर काम करेंगे तो अपने चश्मे को सही समय पे नहीं लगाना, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आंखों की जो नस है उसको सुखाने लगती हैं
0: जी।
1: तो इस वजह से जो ऑप्टिव नस सूखने लगते हैं तो ये ग्लूकोमा हो जाता है।
0: डॉक्टर पूनम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी पहुंचा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे कोई पेशेंट होंगे शुगर पेशेंट तो आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे
1: जी।
0: पूनम जी, मैं एक बात और जानना चाह रही थी कि जैसे शुगर बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा की स्थिति तो नहीं बोल सकते, बट शुगर बढ़ने से जैसे मैं ही अपने घर की समस्या बताऊं, मेरे पेरेंट्स की, तो जब शुगर, उनका कहना कि शुगर हाई होता है तो उन्हें एक धुंधलापन दिखाई देता है
1: जी।
0: तो उस वक्त ऐसा क्या होता है आंखों में शुगर बढ़ने से कि उन्हें धुंधला दिखाई देता है?
1: आंखों में इस समय धुंधलापन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में
0: जी।
1: तो हमें आंखों में धुंधलापन इस वजह से ही दिखाई देता है, कम दिखने लगना, अंधेरा होना, ये एक अर्ली सिम्टम्स है हमारे बॉडी के कि आपको वो संकेत दे रहे हैं कि अब आंखों में आपको कुछ ना कुछ परेशानी है, इस चीज का आप ध्यान भी दीजिए
0: जी। कहने का मतलब ये है पूनम जी कि आंखों में एक दबाव पड़ता होगा शुगर बढ़ने से जी। आधुनिकता की ओर अगर ध्यान दे तो आजकल के जो बच्चे हैं अपने ना खान पान पे ध्यान रखते हैं, ना ही आंखों की देखभाल कर पाते हैं, ना ही शरीर की देखभाल कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिभावकों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि वे बच्चों को अपना स्वस्थ रख सके
1: जी? तो इसमें जनरली जो छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: इनमें आजकल देखा गया है कि बहुत ज्यादा फोन यूज करने की वजह से और टीवी ज्यादा देखने की वजह से आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और इस वजह से वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स उतने ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से रोने लगते हैं, बदमाशी करते तो उन्हें तुरंत कोई भी फोन पकड़ा दिया और उन्हें ज्यादातर चॉकलेट्स वगैरह दे दिए, तो इतने सारे मीठे वगैरह लेने से कहीं ना कहीं बच्चों में जुविनाइल डायबिटीज कहते हैं उनको, बच्चों की भी बहुत जल्दी डायबिटीज होने के चांसेस देखे गए आज के टाइम में
0: जी।
1: तो ये सारे चीजें रहती है जिस वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी कम होने लगती है और दिक्कतें आती हैं। उसके लिए उन्हें अच्छे से उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि समय समय पे आप उनको कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटी कराएं जिससे वो कुछ दूरी से, 20 फीट की दूरी से जो भी चीजें, कुछ ड्राइंग पेंटिंग्स हैं उसे देखें या कुछ कलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ें या उन्हें कलर को पहचानने की कोशिश करें, कुछ कुछ चीजें उनको करानी चाहिए जिससे कि वो ज्यादा अच्छी एक्टिविटी करें, जिससे वो फोन से टीवी से बच सकें। और अगर खाने पीने की बात है तो बच्चों को अखरोट वगैरह हो गए, फूटा चना हम कहते हैं ना, फूटा चना बच्चों को खिलाना चाहिए, ये जनरली बॉडी के लिए प्रोटीन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी अच्छी मसल्स की मजबूती रहेगी ऑटोमेटिकली बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो ये सब उनके लिए अच्छा है
0: जी।
1: तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बोलती भी कि अपने बच्चों को खेलते कूदते रहते हैं तो उनको आप थोड़ा सा जितना वो पकड़ पाए उतना थोड़ा सा फूटा चना और थोड़ा सा गुड़ ये उनको आप खिलाया करिए
0: जी,
1: तो ये उनके लिए अच्छा रहता है
0: जी। बिल्कुल पूनम जी। जी पूनम जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे अभी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के व्यायाम की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि व्यायाम हम जनरली अपने शारीरिक गतिविधियों का व्यायाम प्राणायाम बोलते हैं ताकि हमारे जो और भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे ठीक हो, तो क्या व्यायाम से हमारे आंखों की रोशनी में भी कुछ लाभदायक मिलती है?
1: जी, आंखों की मांसपेशियों को आराम देने, तनाव कम करने और सूखापन दूर करने के लिए किए जाते हैं
0: जी,
1: ना कि चश्मा हटाने या दृष्टि को सुधारने के लिए
0: जी।
1: जैसे कि प्रमुख अभ्यास अगर हम देखा जाए तो पलके झपकाना, आंखों को घुमाना, ये 20-20 नियम, हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखना, ये सारी चीजें शामिल है उसमें।
0: जी जी, मतलब ये एक तरीके से व्यायाम है आंखों के लिए, आप कर सकती हैं, और अगर उस बीच अगर कोई समस्या लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकती
1: जी। हैं जी। कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं आईज की, जैसे कि हम कहते हैं पामिंग, जैसे दोनों हाथों को आपस में रगड़,

0: कर गरम करें और उसको धीरे से अपने आंखों में, चेहरे पे ऐसा आंखों से फेरें। और है जैसे पलके झपकाना, ब्लिंकिंग जिसको हम कहते हैं, स्क्रीन देखते समय अक्सर लोग पलके कम झपकाते हैं, तो इसे आप 10 से 15 बार पलके झपकाना आंखों का सूखापन को कम करता है
1: जी।
0: और आंखें घुमाना जो हम आई रोलिंग कहते हैं, उसकी जो पुतलियां हैं धीरे धीरे घड़ी की दिशा है उसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज देखते रहें, घुमाते रहें
1: जी,
0: तो इससे आंखों की मांसपेशियों को भी आराम मिलता रहता है
1: जी। जी बहुत अच्छी जानकारी आप हमें श्रोता बहनों तक पहुंचाई हैं पूनम जी। तो चश्मे के जगह आजकल कॉन्टेक्ट लेंस की बात हो रही है और लोग उपयोग भी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके क्या हानि है और क्या फायदे हैं, और अगर कोई बहने हैं उन्हें यूज कर रही है तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: जी गीता जी, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्टेक्ट लेंस से रिलेटेड
1: जी।
0: इसके मुख्य फायदे में है बेहतर साइड विजन या चश्मा ना पहनने की सुविधा, जैसे खेलकूद में आसानी हो, कॉस्मेटिक बदलाव, जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा रंगीन लेंसेज भी यूज किए जाते हैं
1: जी।
0: ये सारी चीजें हैं। इनकी हानियों में अगर सही देखभाल ना की जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा अधिकतर बढ़ जाता है, आंखों में सूखापन या लगातार पहनने से जलन या असुविधा की जो कि ज्यादा बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: तो अगर हम देखा जाए तो बेहतर दृष्टि और साइड व्यू के लिए ये सबसे सही है, क्योंकि बहुत सारी बिजी चीजों में या खेल कूद के चीजों में हम इसे तब पहन सकते हैं, अपने सक्रिय जीवन शैली के लिए उपयुक्त है ये। इसे लगाना तो चाहिए पर इसके नुकसान भी काफी हैं, तो आपको यही कहूंगी कि आप इसे ज्यादातर ना यूज करें, चश्मा ज्यादा उपयोग करें अगर हमें जरूरत लग रही है तो
1: जी।
0: और कॉन्टेक्ट लेंस से बचें, क्योंकि अगर हम इसे रोजाना बार बार अगर हम इसको यूज करें तो आंखों में इरिटेशन, इन्फेक्शन होना, ड्राई आईज होना, ये सबके ज्यादा दिक्कतें होती हैं, रखरखाव में भी दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि उसको फिर आपको सॉल्यूशंस में प्रॉपर अच्छे से रखना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि उसे कितने घंटे लगाने चाहिए
1: जी।
0: कुछ उसे 20 घंटे भी लगा के रखते हैं, कुछ ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, कुछ जिनने ध्यान नहीं दिया वो ओवरनाइट भी लगा के सो जाते हैं
1: जी।
0: तो इसमें ये नहीं है, इसको 8 से 16 घंटे ही लगाना चाहिए, सोते समय से उतार देना चाहिए
1: जी।
2: हेलो मैडम। हाँ नमस्कार मैम।
1: जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: हाँ मेरा प्रतिभा यादव।
1: जी प्रतिभा जी, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पूनम यादव, और आपकी आंखों की कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पा सकती हैं जी। आप पूनम जी से बात करिए जी।
0: जी
2: हेलो।
0: हाँ जी,
2: जैसे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मतलब तो हमें क्या क्या मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए तो बताएंगे प्लीज
0: जी। इसके लिए आपको ना अधिकतर ठंडे पानी से आंखों को धोइए, और साथ ही हाथों को रगड़ के नरम हाथों से अपने आंखों को छुइए, और साथ ही साथ आंखों को रोलिंग करते जाइए कुछ देर अपने, जैसे स्क्रीनिंग टाइम है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं, तो उससे कुछ 20 मिनट के लिए अपने आपको थोड़ा आंखों को रेस्ट दीजिए, आंखों को रोलिंग कीजिए, तो ये सारी चीजों से आपको क्या है मांसपेशियों को आराम मिलता है
1: जी।
2: जैसे देर रात तक भी कभी कभी देख लेते हैं तो देखना है
0: जी। जी देर रात को तो फोन चलाना या स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा रखना नुकसानदेह है, तो आंखों की जो रेज जो हमको बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो इस वजह से दिक्कतें ज्यादा जाती हैं। रेज जो हमारी आंखों में पड़ने से ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम देर तक फोन चलाते हैं, नींद नहीं आती हमें, तो ये कारण इसका ये भी है कि अगर हम इस तरीके से चलाएं तो हमें नींद बहुत कम आने लगती है। कुछ पेशेंट्स को इंसोमनिया हम कहते हैं, नींद ना आना, तो ये सारी तकलीफें भी ज्यादा देखने को मिलती हैं।
2: हमें जैसे क्या है जैसे आंखों में से छींटे मार के जैसे वो जैसे होना चाहिए ना ऐसा
0: जी।
2: कभी कभी क्या होता है जैसे आंख जैसे कचरे वगैरह पड़ जाते हैं, तो ऐसे में फिर क्या है मसलना हो जाता है, तो क्या उसके लिए जैसे क्या है मतलब ऐसी आंख के तौर पर क्या कुछ ड्राफ्ट तरह से निकलता है क्या कचरे वगैरह जैसे पड़ जाते कभी जैसे आदमी तूफान वगैरह तो कभी कभी भी अचानक से कुछ मच्छर वच्छर घूम जाता है ना कीड़े मकोड़े जो
0: देखिए इसमें आप क्या क्या ध्यान रख सकती हैं कि जो हम जो सनग्लासेस कहते हैं ना प्रॉपर आप वो पहन के रखिए, जैसे जैसे हम धूल धक्कड़ या जो आप बता रहे हैं आंखों में कुछ चला ना जाए तो उसको ठंडे पानी से आंखों को धोइए, और कोई सा भी आई ड्रॉप डाल लेते हैं तो वो ना करके अपने जो पास के जो डॉक्टर्स हैं, अगर बहुत ज्यादा आंखों में लालिमा बढ़ जा रही है, इरिटेशन हो रहा है, खुजली और जलन बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, तो किसी डॉक्टर को अपने जाके जरूर दिखाएं
1: जी। लगता है आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद जी। डॉक्टर पूनम जी, वाकई में जब हम राह चलते हैं तो कचरे

0: घुस जाते हैं आंख में और हम तुरंत मसल लेते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप आसपास कहीं पानी देख रहे हैं या रास्ते में ही जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, अगर आपके हाथ में पानी रखा हुआ है बॉटल है तो उसे धो लीजिए। मुझे नहीं दिखाई देता है तो मेरे चश्मे खराब हो गए हैं तो मैं अपने मिस्टर का चश्मा पहन लेती हूँ।
1: पानी पीते फिर भी गला सूखते रहता है बार बार।
2: जी जी, इसके लिए जरूरी है कि अपने बॉडी को आप हाइड्रेट रखें। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लीटर पानी हमको गर्मी में पीना ही चाहिए। जैसे हम लस्सी या छाछ, ये सब जो भी अपने को जो हाइड्रेट रखे बॉडी को, ये सारी चीजें समय लेनी चाहिए धूप से निकलने से पहले। इसके लिए आप अच्छे से फल फूल वगैरह भी खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जैसे हम खरबूज खाते हैं, बहुत लोग बेल का जूस जैसे पीते हैं, तो ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी रहेंगी गर्मी के सीजन में।
0: जी माया जी, लगता है आपकी जो समस्या है उसका समाधान डॉक्टर पूनम जी से मिल गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। माया जी कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर पूनम जी की चश्मे का अदला बदली जैसे हो जाता है, हम अपने पेरेंट्स का चश्मा पहन लेते हैं, तो ये केस मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं कॉपी चेक कर रही थी तो मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था तो मैं अपने मिस्टर का चश्मा पहन ली, तो इससे लगा कि मुझे नहीं पहनना चाहिए, मेरी आंखों में थोड़ा सा दबाव हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी मैं इसके लिए कहूंगी कि अधिकतर ऐसा किसी और का चश्मा तो नहीं पहनना चाहिए नियमित रूप से अगर देखें तो, क्योंकि दूसरों का पावर भी अलग है आंखों का, और कभी कभी किसी के हाई पावर हो जाने की वजह से अपने सर में दर्द होना, चक्कर आना, धुंधलापन, ये सब ज्यादा लगती हैं।
0: जी कुल मिलाकर पूनम जी आप यही कहना चाहती हैं कि हमें अपना ही चश्मा उपयोग में लाना चाहिए, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें,
2: क्योंकि सबके आंखों का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए दूसरों का चश्मा लगाने से बचे।
0: जी जी बिल्कुल पूनम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता बहनों तक पहुंचाई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपको सुन रही हैं और जिनकी समस्याएं थी उनका आपने समाधान किया है और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि वो स्वस्थ रह सके। डॉक्टर पूनम जी चलते चलते आप हमारे श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: जी मैं अपनी श्रोता सखियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी आंखों के लक्षणों को देखकर आप शुरुआती स्तर पर बीमारियों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। जैसे आंखों के रंग और संकेत, जैसे कभी पीले आंखें हो जाना तो ये जॉन्डिस के संकेत हो सकते हैं, या लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, लाल आंखें कभी पड़ जाना, या जैसे संक्रमण हो गया, एलर्जी हो गया, या नींद की कमी, ये सब की वजह से भी हमें देखने को मिलती है। दृष्टि में बदलाव हो जाना, कभी धुंधला दिखाई देना, तो ये मोतियाबिंद के संकेत हो सकते हैं या शुगर लेवल के बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। तो इस सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 की कारणों की वजह से भी हो सकता है ये। सूखी आंखें हो जाना, विटामिन ए की कमी, या लंबे समय तक अगर हम स्क्रीन के सामने बैठे तो ये इस तरीके से समस्या हो जाती है। और इसके साथ ही साथ आप पौष्टिक आहार जो है उसका आप अच्छे से ध्यान रखिए, ताकि रोजाना अपने आंखों की जो रोशनी है वो अच्छे से तेज हो सके। आंवला हो गया, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, बादाम, दूध का सेवन अच्छे से करें। 20-20-20 नियम अगर हम बताएं इसमें, तो हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी से किसी भी चीजों को आप 20 सेकंड तक देखें। धूप का चश्मा जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए, यूवी रेस जो हमें पड़ते हैं उसके लिए अच्छे से चश्मे पहने जो प्रॉपर यूवी रेस से आपको बचा के रखें 90 से 99% तक। आंखों को ना रगड़ें जिससे इन्फेक्शन या एलर्जी होने का खतरा रहता है।
0: जी जी बिल्कुल डॉक्टर पूनम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें श्रोता बहनों तक पहुंचाई है। तो सखियों आज हमने जाना कि थोड़ी सी सावधानी और अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सही देखभाल करने से दृष्टि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है और आप एक खूबसूरत दुनिया उस खूबसूरत रंगीन आंखों से आप एंजॉय कर सकती हैं। तो डॉक्टर पूनम जी आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू
3: बहनों। अभी आप सुन रहे थे क्रम स्वास्थ्य वार्ता जो फोन पर आधारित कार्यक्रम था। विषय था अपनी आंखों का देखभाल हम कैसे करें और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर पूनम यादव, आयुष चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़। तो बहनों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता होता को नमस्कार।

अभी महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले हम आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 6:20 पर और संध्या 7 बजे हमारे श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। 6:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा बर बिहाव माँ खाए पिए के जिनिसला नुकसान जान कराओ। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 7:30 पर स्थल ध्वनियांकन पर आधारित किसानवाणी गांव में के क्रम में ग्राम सकर्रा विकासखंड तखतपुर बिलासपुर के किसानों के बीच स्थल रिकॉर्डिंग पर किया गया कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की है। 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको कलाकार भूपिंदर सिंह के गाए गीत सुनवाएंगे। 8:15 पर सुनिएगा रजनीगंधा कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 9:15 से। ये थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल यानी बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय है अतिरिक्त आमदनी का सशक्त माध्यम हल्दी की खेती। 6:45 पर फ्लैगशिप कार्यक्रम में चर्चा होगी मेक इन इंडिया विषय पर। आज सुबह कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05 पर यादों के झरोखे से। कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं 7:30 पर। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम अमराई में गायक कलाकार गया सिंह राज, निका साहू और साथी एवं किरण भारती, हृदय अनंत और साथियों के गाए गीत सुनवाए जाएंगे। फोन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का प्रसारण समय रहेगा दिन में 10:00। हम आपको बता दें श्रोताओं 9:55 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित करेंगे दिन में 11:00। 11:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कल संध्या 5:35 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात का विषय रहेगा युवा और पैसों की समझ। इसके अलावा होगा क्रम युवा पसंद और सवाल जवाब। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:20 पर और 7:00। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा लू झोलाए ले माचाऊ प्राथमिक उपचार पर ध्यान दो। इसके अलावा भेंटवार्ता के क्रम में सफल कृषक से भेंट के अंतर्गत लव कुमार जोहिले ग्राम भिलाई और विष्णु प्रसाद यादव विकासखंड बलौदा जांजगीर चांपा से की गई बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8:00 श्रोता सुन सकते हैं कलाकार मिताली सिंह के गाए कुछ गीत।

रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 लोगन की मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मन ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के विनती करे है। गुजरात के बड़ोदरा में काली एक ठिन जनसभा में प्रधानमंत्री है पेट्रोल और डीजल के उपभोग कम करे और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कक्षा और वर्चुअल बैठका जैसन कोविड दौर के उपाय अपनाए के अपील कर दोहराई। यदि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो पश्चिम एशिया संकट ले उपजे हालात के बीच लोगन मल्ले मदद की अपील करे है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला बर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। NTA है बताइन कि सरकार है पेपर लीक के आरोप मन के पूरा जांच भर मामला ला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ला सौंपे के फैसला ले है। NTA है कहिन कि परीक्षा भर नवा तारीख अलग ले अधिसूचित करे जाही। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार के जानकारी और 3 मई के परीक्षा भर चुने गए परीक्षा केंद्र वैसने रही। एजेंसी है कहिन है कि दोबारा परीक्षा भर और पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं पड़े और परीक्षा शुल्क घलो नहीं लगाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाते मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति भवन में राखे गए कार्यक्रम में 15 जिन नर्सिंग पेशेवर ले जुड़े नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज भर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्स मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मल्ला देगीस। उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में रखे गए कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन करे के घोषणा करीन। नर्सिंग सिस्टर मल्ला अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जाने जाही और स्टाफ नर्स के नाव नर्सिंग ऑफिसर हो ही। राज्य शासन है प्रदेश में चरचरावत गर्मी ला देखत स्कूल मन भर गर्मी के छुट्टी घोषित करे जाए के बावजूद कुछ एक प्राइवेट स्कूल मन डहार ले ए बेरा कक्षा लगाए जाते। इला शासन है गंभीरता ले लेवत अपन आदेश के उल्लंघन माने हैं। लोक शिक्षण संचालनालय है शिक्षा विभाग के जम्मू संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मल्ला चिट्ठी जारी करके ऐसन प्राइवेट स्कूल मन के खिलाफ कार्रवाई करे बर कहे है। के बारे में बिलासपुर उच्च न्यायालय है घलो एक ठिन याचिका दायर करे गई रही से जिला हाईकोर्ट है संज्ञान में ले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान है काली ले छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरा में रही। अपन प्रवास के दौरान उमन ग्रामीण विकास मंत्रालय को तिले चलाए जात आने आने योजना मन के समीक्षा करी। संगे संग ग्रामीण विकास ले जुड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी और हितग्राही मन ले गोटबात करी। श्री पासवान है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ले जुड़े तैयारी और ग्राम पंचायत मन में चलाए जात ग्रामीण विकास के बारे में घलो जान वाली ही। अपन प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री है स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन और आने आने योजना मन के हितग्राही मन ले गोट बात करी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पिंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारी मन बर बनाए जात आवासीय परिसर और मरवाही में नवा सिविल कोर्ट भवन बनाए के भूमि पूजन करीन। ये मौका में मुख्य न्यायाधीश जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मल्ला निर्देश दिन है कि जम्मू प्रस्तावित कामला तय करेगे मापदंड के मुताबिक कराए जाए। प्रदेश में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होए के संग लाउडस्पीकर जैसन यंत्र के प्रयोग पर दिशा निर्देश जारी करेगी है। जौन क्षेत्र में चुनाई होइया है वहां रतिहा 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा देगी है। चुनावी सभा

0: और प्रचार वाले गाड़ी मन में लाउडस्पीकर लगाए पर सक्षम अधिकारी ले अनुमति लेना जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ू पांच समाचार को दी। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के चार जिन लोगन के मौत हो गए। इमा 1.5 साल के एक जिन नोनी घलो शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर है बताइन कि कपरी रोड स्थित एक ठिन मकान में 60 सर्किट की स्थिति आगे लग गई। आगे के चपेट में आए ले घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए और आगे पूरा घर में फैल गए। घर में आगे लगे की स्थिति यहां रहैया परिवार के मनखे मन बाहर नहीं निकल सकिन और जिंदा जल गए। पुलिस मामला की जांच करत है। जांजगीर चांपा जिला के धुरकोट गांव में कलिंदर खाए के बाद एक जिन लड़का के मौत और 3 जिन आने लड़का मन के बीमार होए के मामला आगुआ है। बीमार लड़का मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है और उखर हालत सामान्य बताया जात है। प्रशासन ह कलिंदर के सैंपल ला जांच पर भेज दे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ह गांव में लोगन मन के स्वास्थ्य की जांच करत है। रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करे है। महासमुंद धमतरी और गरियाबंद जिला मन में नाकेबंदी के दौरान फेरी लगा के कपड़ा बेचे के आड़ में करे जात अंतर्राज्यीय तस्करी के खुलासा हो है। पुलिस आरोपी मन के ले 378 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है जेखर भाव बाजार में 1,98,00,000 रूपया बताया जात है। कार्रवाई में 11 ठिन गाड़ी जब्त करे गए है और पुलिस 12 जिन तस्कर मन ला घलो गिरफ्तार करे है। ये तस्कर मन कपड़ा के ढेर के बीच गांजा रख के ओडिशा ले मध्य प्रदेश जावत रहिन। नारायणपुर जिला में जिला सुरक्षा बल मन माओवादी मंडहार ले लुका के रखे गए 1 करोड़ रुपया नगदी के संगे संग बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस और रोजे काम में अवैया जिनिस बरामद करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सुरक्षा बल मंडहार ले करे गए कार्रवाई के जानबा देवत बताइन कि बछर 2025-26 में जिला में 270 हथियार के रिकवरी हो है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गंवई के सड़क मन के बढ़िया रखरखाव में पूरा देश में दूसर स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सीहोर में रखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ला सम्मानित करीन। राज्य कोतिले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे पुरस्कार लीन। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबा और 8,000 ले ज्यादा सड़क मन के नवीनीकरण करे जा चुके हैं। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ला गैस चोरी के मामला में निलंबित कर देगे है। पाछू 9 मई के ए मामला के खुलासा करत पुलिस जिला खाद्य अधिकारी के संगे संग 3 जिन लोगन मन ला गिरफ्तार करे रहिन। आरोपी मन 6 ठिन LPG गैस कैप्सूल टैंकर मन ले गैस चोरी करके ओला 80 लाख रूपया में बेचे रहिन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होए के मौका में अवैया 30 मई के रायपुर में पत्रकारिता मारतंड उत्सव मनाए जाही। ये बारे में रायपुर के प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मिलके उमल्ला कार्यक्रम में शामिल होए के न्योता दिन। मुख्यमंत्री आयोजन के पोस्टर के विमोचन करीन। ये कार्यक्रम में बड़का पत्रकार संपादक और मीडिया विशेषज्ञ मन शामिल हुईन। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग ले मिले जानबा के मुताबिक प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग बूंदाबांदी होए के संभावना है। मौसम विज्ञानी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि प्रदेश में अवैया 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकते। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला पर 3 मई के होए नीट UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम के इस अंक के पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमारे इन सभी श्रोताओं ने की है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह, रैया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति, ख्याति और जगदीश सोनी, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा अर्जु, नव्या और देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम और हमारे श्रोता हैं बुढ़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, हटरी चौक बिलायगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु रजनी और प्रियंका देवांगन, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से सरला मनवर, राहुल, रोशनी विशाल और चेतन मनवर, बेबी प्रियांशी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय और नमन ढींगिया और बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, भागवत आप सभी दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदूरकर, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेस, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, छत्रपति, संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट अंसुमन और बेबी ओवी, गांव बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, पदमपुर श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा और नेहरू चौक पैटर्न से हैं सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, लोरमी गांव चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुविधा निवाला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, गौरैया चौक जालंधर से है रोशन जहां, नुसरत जहां और महक जहां, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट और साहिल कांगड़ा, चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा और वंदना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फकीरा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार है रविन्द्र जैन। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।

0: लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नीलिमा अजीम, आप सभी हैं। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल पिंगावाला चौक से, और सहारनपुर से हैं सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग, पथिक और कृष्ण। सहेली उदयपुर से कांता देवी, फरीदा, शबनम, किरण देवी, रंजना दवे, शांतिवारी, सबीहा खानम, रईसा खातून, भारती देवी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक सेन। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिया, के संजीव डाबेराव। करनाल से संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा। और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन दिवाकर और वंशिका। रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, सरिता गौतम। और आप सभी कलश मार्ग उदयपुर से लाला सोनी, मोहन कसारा, बाबू भाई चांदीवाला। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। नांदेड़ येताला से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। पुरानी भिलाई 3 चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी। राजस्थान से गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। और मुंबई से अबिदा नाज, फातिमा नाज और सबा अंसारी। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। पंजाब वंडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति रट और बाबू रेयांस ठाकुर। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुल्लिक क्षत्रिय। लूतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्ष और आतिका। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा। सागर और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। सावनपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन। आप सभी ने सुनना चाहा है लैला मजनू फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। साहिर के लिखे गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आप सभी ने ईमेल भेजे हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, और दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, और मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफ उद्दीन। आप सभी लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रखमणि बघेल, साहिल भारती बघेल, जनकपुरी से सहारनपुर से जॉन डिकैस्टो, रोजी पर्ल डिकैस्टो और विलिस डिकैस्टो, और हमारे ये श्रोता है मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतना भगत, धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा, और खरगोन सनावत से मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, और आदलपुरा गोंगावा से संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुणी और प्रणव सांवले, हिंगड़ी अलोट रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़, यवतमाल विदर्भ से संतोष और विनोद खड़ से, संबलपुर कंकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। आप सभी हैं पिहरा बाजार झुमरी तलैया से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार सनेतनी, गुड्डो कुमार गुप्ता और मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साहु, रिया जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, बाबू खदान कोठी, बोरोपारा चौक से, और विकास बिरगांव तखतपुर से हैं जैमुन कौल, दिलीप, भुवनेश्वर कौल, रामायणी कौल, और नांदघाट काटलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, उदयपुर सरगुजा खोंदला से जोविधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, और आप सभी अलीगंज एटा से हैं दीपक शाक्य, ज्योति सक्षम शाक्य और डीके शाक्य, फरुखाबादी, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके, हीरामन शेंडे और प्रतिभा गोंडाने, और हमारे ये श्रोता हैं तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और बेबी आयुषी श्रीवास, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशु विशाल खेरा, तिवांसी खेरा, सालिनी खेरा, और रायपुर से है विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, और रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज और ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मिथिलेश यदु, विष्णु साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वैदेही जोशी, और इंद्रा विहार दिल्ली से है बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का अगला गीत, सैलाब फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर।

और अब कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशकर्ताओं के नाम हम बता दें। मुकाम पोस्ट लेंची चोली तालुका पंडरपुर से हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा। दान की रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से भाई रज्जाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा परवीन, आसिया परवीन। जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। भाटापारा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम और योगेश्वरी साहू। आप सभी महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, अशरत, अक्रम वसीम, अक्रम रूबीना, वारिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुआत बिहार से शेख जफर हसन नरगिस। और अब भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज नारायण बारेकर, नारायण यादव, भुवन कामरी। और बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। और सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और उदयपुर से हैं गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तांबोली। और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, यशु निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। धनौरी तेलीवारा से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। और बठिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, मरण, एकम, दमन और अभिजोत। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक और मंजू भाटिया। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशन अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनई। जिला बिलानस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। और कुम्हारगली कुलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत और मिथिल नाचानी। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत, एकांश गवाणकर। आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और बोरी खुर्द के सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगताई राजे जाधव। और आरेगांव से संचित देशमुख, मोताला से प्रथमेश देशमुख, करडा से स्वामी देशमुख। और सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्व चौहान। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं रखवाला फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया है। हसरत ने गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए।

इसी गीत की फरमाइश में कुछ और ईमेल आए थे, उनके भी नाम हम आपके आपको बता दें। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और गुजरात गांधी ग्राम से पूजा, प्रवीण, सोनी, पायल और जगदीश जौहरी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुजाता पोहरकार, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, पिपलिया मंडी मंदसौर से घनश्याम मोदी, गोपाल रमेश मोदी, मोहित और सक्षम मोदी, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर, गोविंदपुरा अहमदनगर से, गोगावा खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मंगला इंगले, पावर कवड़ा यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, बल्लारसाह से सूरज लौंढे, प्राची लौंढे, एकलव्य लौंढे, और हमारे ये सभी श्रोता भी अनुरोध करता है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रोताओं, इसी के साथ ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
8: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
7: इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के बीच लोगों से सहयोग की

0: अपील की है।
1: प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है, पेट्रोल डीजल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद कुछ अशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश का उल्लंघन माना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर और मारवाही में नए सिविल कोर्ट भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज शाम सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि खपरी रोड स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले के सारे तथ्यों का पता चल पाएगा।
2: जो चार बच्चों ने कुछ तरबूज खाया था और रात में चिकन खाया था, तो उन चारों बच्चों को जिला अस्पताल जांजगीर लेके आए, तो उसमें रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई और तीन बच्चे यहाँ पे भर्ती थे। तो उसके लिए जांच की टीम तुरंत ही वहाँ पे गांव गई उनके, और वहाँ जाके और बाकी भी बच्चों की जांच की, तरबूज में

0: वो कुछ कीटनाशक किस चीज से पकाया था वो नहीं जानते। बाकी जैसे कि ये पता चला है कि वो तरबूज एक दिन पहले का कटा हुआ था और उसके बाद शाम को बच्चों ने खाया, जो कि पूरा दिन इतनी तेज गर्मी है तो उससे सड़ भी सकता है। तरबूज का सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट वालों लेके गए हैं और दूसरा रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक विभाग से आएगी, तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से हुआ है।
1: इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत बच्चे का बिस्तर सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए करीब 1 करोड़ रुपए नकदी सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हाल के महीनों में जिले में 270 हथियारों की रिकवरी हुई है।
2: 47 3 SLR, 2 303 315 है, बहुत सारे मोर देन 250 to 300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई, तो दो जगहों से कुल 1,01,64,000 रुपया जब्त हुआ है। ये पूरी कार्रवाई में STF नारायणपुर DRG हमारे BSF ITBP का एक संयुक्त योगदान रहा।
1: रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 378 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रूपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच गांजा कर ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को गैस चोरी के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बीते 9 मई को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 6 LPG गैस कैप्सूल टैंकरों से गैस चोरी कर उसे 80,00,000 रूपये में बेच दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
3: प्रदेश में आज से लेकर आगामी 5 दिन तक मेघ गर्जन का एक्टिविटी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना है और इसके साथ साथ हल्की वर्षा भी होने की चांसेस है। अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकतम तापमान आज से लेकर अगले 4 दिन तक लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री का क्रमिक वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजे हैं और लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। और कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए आप सभी ने की है। अहमदपुर खैगांव खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश फुलमाली, दीपक समर और वेदिका फुलमाली, शाहजीनगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, और मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले।

कविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले पुणाले पुणे से, अजय सोनवाने करिश्मा और अविका सोनवाने दुर्गा हासु कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू आर्यनगर कोका भिलाई से, उत्तम सिंह जंघेल मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार आयुष और नंदिनी जंघेल धमधा ग्राम सुखरी कला से, अमित जंघेल, सकुन अरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल भिलाई नगर से, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला और आसमा श्याम कुंवर नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता बागबाहरा भदरसी से, पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन पथरिया भरेवा से, चंदूलाल सिंह राउल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंह राउल हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोर्ड के श्रीमती नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े और आप सभी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल और नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुग्गू सिक्का, मंजुनू काटिल्ला से कमल बालूजा और इनके परिवार के सभी सदस्य, पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति गुप्ता, राते दीपक और अंकुर राघव गुप्ता और आप सभी, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर सिटी छाबड़ा और आप सभी, वीरम गाम जमसंघ से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सनी जैमिन कुमार, हेतल और कृष्णा भावसार, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी भाटिया और मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर ये मेकर, प्रमोद और प्रदीप ये मेकर, जनकपुरी सहारनपुर से आप सभी हैं, अपने अपना नाम नहीं लिखा अम्भाई, सिल्लोड छत्रपति संभाजी नगर से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता और वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, खमलिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, गांधी नगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में अमरदीप फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत की धुन बनाई है श्री रामचंद्र ने, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए आप सभी ने की है। जींद हरियाणा से जसबीर सिंह, अरोड़ा जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, और जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, कोलपोल उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता विवेक, मनीष प्रांजल और लक्षिता नैनवाया, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, हिप्परसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, शेख करिश्मा शेख, और आप सभी गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुप्ता अंजुम, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, निवान, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, ग्राम ममना हमीरपुर उत्तर बुंदेलखंड से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गंवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गंवाणकर, सिद्धांत आकार हाइट्स बहादुरा से वैशाली शैलेश गंवाणकर, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गंवाणकर, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, और बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी, सूरज और कुशल वर्मा, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार और रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, उमरखेड़ से आमिर और खान और शबाना खान, पलारी बलौदाबाजार से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और वर्मा और यशस्वी वर्मा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, और पलारी से नीतीश कुमार, लखलाल देवांगन, सावित्री बाई, ईशांत, तनुजा देवांगन, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शाबले पाटिल और राजदीप, राशि, राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा राहुल साहू, और आप सभी जालंधर से हैं मीना कौर, नरेंद्र और संदीप कौर, बुलढाणा वर्ण सिंधी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेघ, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नितेश कुमार आप हैं पलारी से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पुनाराम, कृष्णा देवांगन और वलाली व डाली देशमुख से राजेश, खोबरखेड़े शिवसागर, इंदिराताई, तनुज खांडवी, बुलढाणा से दीपावली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से है रामचंद्र माखीजा, काफी भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति और माही छुटको, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, और जेल रोड शिमला से प्रमिला पाल, सोनाली, आशुपाल, अजीता पाल, रायगढ़ से उत्तम प्रवीण, प्रमिला सोनी, और आप सभी मेहर अरोड़ा वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद, अजीता कुमारी, मिथुन सांगा और दीपक दास, पंचशील नगर मुंबई से इकबाल मोगा, शमीम अहमद मोगा, आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर डर फिल्म का गाना उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और शिवहरण ने इस गीत की धुन बनाई है। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशकर्ताओं के नाम इस प्रकार है। मेहर पटेल कॉलोनी राजकोट से अजीता पॉल, हेमा प्रमिला पॉल, छोटी बलिया करजत से अहमद मौगा, इकबाल मौगा, गतौरा से बोधी राम, आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे, झुमरी तलैया से महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी, तस्नीम कौसर, सोलम बली, बक्सर बिहार से राज अंसारी, डब्ल्यू वली अंसारी, फातिमा राज, कोलकाता से अजीता जाधव, शिल्पी राज, हेमा राज, सरिता जाधव, बुलंदशहर से प्रभा डोमिन और राजनांदगांव से राजेश डॉली, महेश डॉली और रमेश डॉली, खंडवा से दुर्गा कुमारी, द्वारिका बाई और अनिता कुमारी, सरगुजा मेन पार्ट से विनोद यादव, पूजा रानी और विजय यादव, जानवी डोम, पिंकी, रोहित डोम डोंडी लोहारा से है, फर्जी शंकर, हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभा रानी बेलदार, जेल रोड रायगढ़ से उमा राज, जगदीश राज और आप सभी महादेव पारा से हैं, मीरा, सिमरन और योगेश।

कुमार राजवाड़े, हमारे ये श्रोता हैं फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, अविराज सिंह, गुरलाल, शुभदीप सिंह, गुरमान सिंह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, और जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, पार्थ हियांश चंदन, मजन, और आप सभी हैं बटिंडा रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर, लोहारिडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू, आप सभी सरगुजा मेन पार्ट से अजीत पाल, लक्ष्मी और प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से अनुश्री, प्रदीप, और आप कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और अफजल मलिक, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन और मड़खेड़ से भाई सिराज खान, सबाना बेगम और फरदीन खान, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान, पौड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, आप सभी रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर कौसर, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, पद्मनगर नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, और पजौनिया जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, गिर्रा पलाड़ी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू, और उजभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष, शिवन्या और अन्नु गोस्वामी, आप सभी को आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं शर्मिली फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, लीजिए सुनिए।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के साथ 7:20 हुए हैं और अब आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में।

सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार। संगी हो, आज ए मंगलवार और आज के दिन अपने सुघर गोठ बात लेके आए। ऐसे तो रोज हमर गोठ बात होते है ना, ग्राम सभा किसान वाड़ी के माध्यम ले। फिर आज हम बताबो एक ठीक ऐसा विषय के बारे में जेन हर मतलब जे में ध्यान को देवत हन तो बहुत पैसा के बचत होते, संगे संग हमर स्वास्थ्य के घलो सुरक्षा होते। अब का बात है भाई, ध्यान लगा के आप मन सुनिहा रेडियो के माध्यम ले, रेडियो के तीर मा जहा नहीं है तो मोबाइल ऐप ले घलो आप मन सुन सका था, और गूगल ले AIR बिलासपुर आप मन चपक देहा तभो ले आप मन सुन सका था। तो संगी हो, हम बात करी हमर देश के है ना, हमर देश होकर बाद हर राज्य मा एक ठीक खुशी के तिहार होते जेला कहथन बिहाव। अब बर बिहाव तो भारी खुशी की बात आए है ना, काबर के देखिया एमा दूरिया दूरिया ले रिश्ता नाता पूरा परिवार के समाज के और गांव के लोगन मन जुरिया थे, और जुरिया के बढ़िया फिर बर बिहाव नोनी रह चाहे बाबू करथन है ना। एमा बहुत खर्चा भी होते, कतको संगवारी मन अपन अपन है ना आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्चा करते, बर बिहाव तो जैसे तैसे निपट जाते। अब बाद में फिर का होते, नुकसानी घलौ होते है ना, कर्जा घलौ होते। ये सब बात के हमला ध्यान रखना है, काबर के दिखावा बर तो हम कर लेथन आनी बानी के पकवान बनाथन, और वही पकवान जब फेंका जाते तो पूरा यहर देश के एमा नुकसान समाये रही थे। ध्यान लगा के बात ला सुनिया, काबर के थोरकुन मन में यहर आबे करी आपो मन के, और सचेत घलो आपो मन होहा। तो जैसे कि मेहमान आते तो हमू मन चाहथन कि बढ़िया बढ़िया खाना पकाए और बढ़िया खवाई है ना, कोनो प्रकार के कमी झन आवे, यहर अच्छा बात है, मेहमान की सेवा होते। फिर ये देखे जाते कि जरूरत ले ज्यादा खाना बन जाते, एमा हिसाब किताब नहीं रहे। गाँव में देखिया चाहे शहर में तो समधियारो आथिन, और हम जानत हन समधियारो चाहे बरतिया आवे तो एमा संख्या नहीं रहे निश्चित के कतका झिकावथिन है ना, और पूछिया कैसे ऐसे घलो लाज लगते कि कतका झिका है भाई कैसे पूछी, एमा तो कुन आने बात है ऐसे कह के। तो ये सब बात के कारण का होते कि खाना है ना बहुत ज्यादा पक जाते, नानी बानी के पकवान भात साग तो अलग है, ओमा जिन लगैया जिन जीनी से वह हर अक्तिहा एक उपयोग होते। और फिर देखिया टाइम बेटाइम बरतिया और जिन समधियारो है एकर अवाई हो जाते, तहले खर्चा पानी घलो बढ़ जाते, संख्या के घलो आगम नहीं मिलाए, और अनाज के केवल एमा नुकसान नहीं है, एमा किसान की मेहनत पसीना घलो समाय रही थे। तो संगी हो, एक दाना अनाज उपजाए बर सोची कतका का नुकसान हुआ है बतावा है ना, एक दाना उपजाए बर रात दिन किसान मन ला तपस्या करे बर लगते, मेहनत लगते, रात दिन किसान मन रेती वेती खातू के है ना खातू के व्यवस्था में लगे रही थे, पानी के बिजली नहीं है तो कैसे करी, फिर वही उपजाऊ जिन शक्ति है भूया के एकर से फिर दाना हर फिर मेहनत लाते, फिर हमर उत्पादन हर बढ़ते। अब कतको ऐसे आ जाते हैं मौसम के अनुरूप फसल खलो नहीं हुआ है, तो कतका कन में बिजली बिल का सोचा है ना, कतका कन मेहनत पसीना रात के जागरण खातू माटी।

और दवाई बीजा के लागत ला सोचिया तो बने अकन खर्चा हो जाते। अब का होते जैसे कि बर बिहाव होइस एमा उत्तर धुर्रा हम आनी बानी के खाना पकाए। कतको जगह तो आजकल हो गए है ना फैशन के जमाना है अंग्रेजी में कही था तो बफर सिस्टम घलो आ गया। आजकल गांव घलो में बफर सिस्टम होते तो उहू में हम का करथन अगतिहा अगतिहा खाना दिखाए बर दूसर का दिखाए बर पका डरथन। अब फिर का होते।

अब उपाय एक ठीक है कि ये सब के हम योजना बनाई कि कतका झिकावत हिन है ना बर बिहाव कोनो कार्यक्रम मा तो ये भोजन हर नहीं पका है और जेकर जरूरत है वो मल्ला मिल ही काबर के देश में देखी छत्तीसगढ़ में अपन गांव में कई झिक ऐसन लोगन हिन जे मल्ला एक टाइम के भोजन नहीं मिला है भूख के कारण है ना अभी तो चाउर मिल जाते थोकन आने स्थिति है ऐसे स्थिति रही से कि चाउर बिना मतलब ऐसे है भूख में कई दिन लांघन सोवत रहें कई परिवार तो ये सब बात के हम अल्लाह ध्यान रखना है काबर के सब मनखे ला लेके चलबो तभी हमारे भारत हर एक बनी तो ये सब भोजन के व्यवस्था उनकर तक पहुँचाए एक लिए व्यवस्था जमाई व्यवस्था हमारे कैसे जमाना है कि हमारे देखना है कि कहाँ आश्रम है ज़्यादा भोजन बच जाते तब है ना आश्रम कहाँ है गौशाला कहाँ है जरूरतमंद तक पहुँचाए की व्यवस्था हमारा रखना चाहिए और संगे संगे एक बात के और ध्यान रखी जैसे कि बर बिहाव हो ते वहाँ हम का करथन प्लास्टिक है ना और डिस्पोजल प्लास्टिक के आवत है एकरे हम ज़्यादा उपयोग करथन और बिहनिया देखी है ना तीन चार दिन बाद बिहाव हुआ थे चाहे कुछ कार्यक्रम होते तहाँ कचरा के ढेर उन कुढ़ा जाते अब ये कचरा के ढेर यही लग गरुआ बछरू खाते है ना जानवर मन खातिन उहू मन बीमार हो सकत हैं तो कतका का नुकसानी हो सोच सकत हन एकर जगह में हम जैसे कि है ना दोना पत्तल है एकर उपयोग करत हन दोनवा है ना तो पर्यावरण के एमा का हो है नुकसान घलो नहीं हो पर्यावरण सुरक्षित रही और दोनों के जैसे उपयोग करत हन पत्ता के सराई पत्ता के मोहलाई पत्ता के एकर से जिन माई लोगन हीन जे मन का करथिन इनका रोजगार मिलते आजकल तो कार्यक्रम चलत है ना NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कई जी माई लोगन मन जुड़े हीन उहू मन ला रोजगार मिल ही और उनको फायदा हो ही है ना तो ए तरह ले हमल ला काम बूता करना है पर्यावरण ही तैसी हमल ला बूता करना है तो संगी हो कहे करत ही है कि अन्न के एक एक दाना अमोल है खाना बचाना मतलब किसान के सम्मान करना है प्रकृति के सम्मान करना है और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनना है जेखर ले दूसर मन घलो सीख लेवाए और कहें कि हाँ भाई इनकर परिवार में बहुत बढ़िया सिस्टम चली से आना यही हमूल अपनाना है और पूरा लागू करके आना देश में जतका खपत होते ऐती वीती है ना फालतू कही भोजन की बर्बादी होते एला बचाना है।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ संगी हो, ये संदेशा आप मन सुने हा आओ आगू के कार्यक्रम में चला था हा ना किसान वाड़ी में तो चला चली और उहू में सुघर रिकम के बात बताबो और गोठ बात घलो है तो चला चला थन किसान वाड़ी कार्यक्रम में।

0: एक घाव बता देते हन फल उद्यान की स्थापना और फूल के उत्पादन तकनीक विषय में अभिहनिया 11 से 11:30 बजे की विषय रही ड्रैगन फूड के उत्पादन तकनीक बढ़िया विषय है ड्रैगन फूड है ना ये हर लगत है और कम खर्चा में ज्यादा उत्पादन है तो एकर से विषय ले संबंधी जापन की कुछ समस्या रही जिज्ञासा रही तो समाधान पाए बर फोन नंबर है एम फोन लगा है 2665 92 फोन लगाए की पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड 07752 खचित लगा है। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण हो ही 14 मई आने वही दिन और 15 मई के अही बेरा सूचना सिरावत है। अब आप मान लो ये कहबू के अभी के जैन बेरा है संगी हो पानी गिरा थे बीच बीच में तो माटी जांच कराना अपने जरूरी है। माटी जांच के संग में हमला अकरस जोताई घलो करना जरूरी है दोनों बात के ध्यान रखी है तो ये बात के ध्यान रखी संगे संग हमला माटी के जैन ताकत बढ़ाते हरियर खातू एकर उत्पादन करे बर हमला सोचना है हरियर खातू का है एकर बात आप मन ध्यान देहा काबर के अभी देश के प्रधानमंत्री मन है ना मोदी जी मन कहत ही के थोड़ा सा पेट्रोल के उपयोग डीजल के उपयोग हमला कम करना है संगे संग जतका उत्पादन मन लगत है खातू माटी है ना एकर उपयोग करना है काबर के समस्या आ सकत है तो ध्यान थोकन देना है और हो सके तो आप मन नाडेप कंपोस्ट है जैविक खाद है केचुआ खाद है एकर उपयोग करा तो मनुष्य और जैन प्रकृति है पशु है इनका जैन स्वास्थ्य हर बढ़िया रही और हरी खाद को आप मन बनावा था ना डारा था तो हरी खाद से हरियर खातू से आप मन के फसल के उत्पादन बहुते बढ़ जाही और यूरिया कंपोस्ट जतका कन आप मन डारा था ना नाडेप में कंपोस्ट नहीं यूरिया डारा था और फास्फेट उर्वरक एकर मात्रा हर बहुते कम लगते तो का करना है हमला हरियर खातू के मतलब है सनई ढेंचा मूंग उरीद एला बो देथन अब बोए के बाद बढ़िया कन्हिया अतका जाम जाते है ना वो कल ऊंच हो जाते तो एला सरो देथन सरो के बाद आने माटी में मिला के पानी में एक बार जब सर जाते फिर एमा हम 45 दिन बाद है ना ये हरहरिया रथे जोताई करे के बाद 45 दिन के बाद लगभग 1.5 महीना हो जाए एकर पहली है ना ध्यान रखना है तो माटी में मिला देहा तो यह खातू कस बढ़िया सर जाते और उत्पादन बढ़िया बाढ़ थे आप मन देखी हा कुछ फसल लगा हा चाहे धान चाहे कुछ तो एमा हरियर खाद के उपयोग आपन करे रही हा और कहो जिन खेत में नहीं कर रही हा दोनों के उत्पादन ला देखिया तो हरियर खाद में यूरिया की मात्रा भी रहते वानिक बानी के पोषक तत्व रहते है ना भूया में जे रहते तो ये सब समा जाते बढ़िया मिलते तो आप मन से यही है कि आप मन माटी के ताकत बढ़ाए बर हरियर खाद के उपयोग करा और बढ़िया फसल के उत्पादन लेवा तो संगी हो आज किसानवाणी गांव में हमर संगवारी गए रहीन ग्राम पंचायत सकर्रा विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर तो इन्हें के स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आप मल्ला सुनावा थान रिकॉर्डिंग और संपादन है वीरेंद्र निर्मलकर के और संयोजन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के तो सुनी ये किसानवाणी गांव में
1: किसान भाई बहनी हो जय जोहार राम राम आज आप मन हम लेके चला थन संगवारी हो स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव के तहत ग्राम पंचायत सकर्रा ग्राम पंचायत सकर्रा बता दी तो आप ला बिलासपुर से रायपुर रोड जहां हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट ले पश्चिम दिशा की ओर मार्ग जिन जाते वो जाते सकर्रा पहली पंचायत पर थे छतौना फिर रमसेना फिर सकर्रा सकर्रा ग्राम पंचायत में हम पहुंच गए संगवारी हो फिर आज ये बता दी आप मल्ला कि ये रिकॉर्डिंग और संपादन वीरू वीरेंद्र निर्मल करके है संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के है ये ग्राम पंचायत में आप बढ़िया देखा थन तो पुलिस चौकी है हाई स्कूल है लेकिन और नोनी पीला मन के अलग है और एक खुशी की बात है कि यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा और एक अभी नवा नवा यहाँ घोषणा हो है सैनिक नर्सरी स्कूल की तो ये ग्राम पंचायत आगू बढ़त हवे विकास के रद्दमा यहाँ के किसान मन के सिंचाई बर कोपरा जलाशय घलो बने हैं तो हम पहुँच गए ग्राम पंचायत सकर्रा आओ यहाँ के लोगन से हम
2: दीदी राम राम
3: राम राम राम राम
2: काना है आप मन के
3: मोर नाम बिंदु है
2: तो लगत है बने खेत खाटा ले आवत हो बने भिनसर है निकल के रहो खेत ले क्या ले इसे लगत है
3: हाँ अब काहे घाम के दिन है।

हाँ सबो संगवारी मन के स्वागत है बैसाखू के जय जोहार है संगी हो एठी के कार्यक्रम संबंधी सूचना बता देथन अवैया बीरस्पत के आने 14 मई के हमर स्टूडियो में बिहनिया 10:30 ले 11 और 11 ले 11:30 बजे के दूठिक विषय रथे एमा उपस्थित रहिन डॉक्टर अमित शुक्ला आप हो विषय वस्तु विशेषज्ञ है न तो इंकर से आप मन 10:30 बजे ले 11 बजे तक जन सवाल पूछिया विषय रही फल उद्यान की स्थापना फूल के उत्पादन तकनीक विषय में

0: बिहान निकल जात हन 6 बजे, एदे 9 बजे के आसपास आ जात हन। खानती उनती खाना तरथन डीपरा लखान के पार में चढ़ात हन दे।
1: अच्छा तलेवा न भाई, हमन धीरे धीरे कुठियाबो आप मन।
0: हाँ
1: तो ये बताओ, आप मन खेती किसानी कतेक दिन हो गए आप मन ले काम न करत खेती किसानी के?
0: बहुत दिन हो गए, से 30-35 साल हो गए।
1: ओ, तो खेती के काफी अनुभव है आप मन ला खेती किसानी करे के कहे जाए, है ना?
0: हाँ
1: तो दीदी ये बताओ कि सबले पहले अभी तो किसान मन काहे बर बिहा में दिमाते रहिन हवे, और संगे संग किसान मन के अभी जिन मुख्य काम है वो भी का काम बुता चलते बोला आप मन से हम जानना चाहतन। तो ये बताओ कि किसान मन के प्रमुख काम कौन दिले चालू होते हैं?
0: अबे दे शादी बार बिहा निपटा के आए हैं तो अगतिक दिन ले चालू हो जाते। अगतिक दिन ले अब बीजा उजा बोए ला हो जाते, जमाए ला और काहे छेना उना धरे ला, सब काम चालू हो जाते। शुभ काम है मतलब
1: अने
0: वही दिन
1: किसान मन
0: किसानी
1: के
0: के काम चालू हो जाते।
1: अने शुभ मुहूर्त अक्तिले माने जाते हैं ना?
0: हाँ
1: अच्छा, तो दिन का काबूता करे हो आप मन खेती किसानी के
0: अब वही
1: लिए?
0: 5 झउहा का कथे खातू ला खेत में फेंके हैं और थोड़ा बीजा छींचे हैं और कोहड़ा ओढ़ा लगाए हैं ने दे। अब वही काम करे हैं, छेना लकड़ी धरे हैं।
1: अच्छा, तो ये कोहड़ा लगा के नियम उही दिन ले है का?
0: वही दिन ले चालू हो जाते अगतिक दिन ले। हाँ बीजा लगाए कुछ भी।
1: अनेक किसानी के कोई भी काम जिन्हें है ना,
0: हाँ
1: थरहा लगाए काम है का,
0: हाँ
1: कोई
0: हाँ
1: बीज
0: हाँ
1: उज दे के काम, तो ये कोहड़ा बलता है तो आपन कैसे लगाए कोहड़ा? कौन रंग लगाते हो, कैसे लगाते हो आप?
0: अब कोहड़ा लाए दे छानी के नीचे मा लगा रही थान, माटी कर दे थान 2-4 झउहा। अब वही मा लगा था ने दे 7 ठान खोद दे थान।
1: अच्छा
0: हाँ अब दे अब तहारे पत्ता उत्ता ही तहारे अब राहेर काढ़ी लोग तीरे तीर रून दे थान, गरुआ गाय मत खाए कह की।
1: तो एक मतलब है आप मन राहे लगाते हो आप मन,
0: हाँ लगा था ना
1: है
0: पार
1: ना?
0: मरा लगा रहा
1: अच्छा
0: था।
1: अच्छा तो अब ये बताओ जैसे कि अभी आप मन बढ़िया आए हो खेत ले, छाव
0: हाँ
1: में ते बैठे हैं, तो हमार मन हो इसकी हमन गुठिया ले निकलन करके,
0: हाँ
1: तो ये तो सुघर बात है। तो अभी खेत में प्रमुख का काम होता करत हो आप मन?
0: अभी अभी दे कान कोदारी चालू हो है। अभी कांटा उटा बीना था ने दे अब और ही जलावा था कांटा उटा बीन के और डीपरा उपरा खान के मुही के तीर में माटी रखा था पार में चढ़ावा था। वही काम चला थे अभी।
1: अने अभी सुखा है तो सब बढ़िया मुही पार बांधे बर माटी उट्टी सकेले तो कहे जाए,
0: हाँ
1: है ना?
0: हाँ
1: और कहे जाए तो कांटा के बात करवो तो इसे कांटा तो कई प्रकार के हमर खेत में जाम जाते हैं ना,
0: हाँ हाँ
1: का कांटा आप मन के खेत में है अभी देखे मिलत है?
0: कांटा हा भाई दे कुथुआ रहते तेनो कांटा मा जाते, बमरी कांटा रहते, एक आध दूठी पणकी कांटा है।
1: ये पणकी कांटा काला कहते हैं?
0: पणकी कांटा हा मतलब ना जमीन में छैले रहते हुआ बहुत कांटा रहते हुआ, बिना चप्पल के आदमी चले नहीं सके उमा।
1: अच्छा, तो वह रुखो थी कैसे
0: नहीं नहीं ऐसे नहीं हो,
1: बन खादे?
0: बन खादा जैसे रहते। हाँ
1: अच्छा, तो ये पणकी कांटा भी है नुकसान करते कहो, आने गोड़ हाथ में चिपते का है?
0: बहुत नुकसान करते, बहुत गर्त एकदम मतलब वो कांटे चे पूरा, बिना
1: अच्छा
0: चप्पल के आदमी चले नहीं सके। हाँ
1: अच्छा तो अभी यही बेरहे क्योंकि आप मन उखाड़ था। अच्छा, आप मन बताओ कि खेत में दुबी कान है ना,
0: हाँ
1: तो कैसे अभी पाजे थे दुबी कान लभी
0: अभी तो
1: गर्मी?
0: पानी है गिरी से तो अब हरिया थे, गर्मी में हरिया थे चिबे हो। अब पानी गिरी तो और बढ़िया हरिया गे उल हो गए मतलब।
1: अच्छा,
0: तब तो खान खान के अब माटी झर रहा के पार में सब फेंका जाते जाऊ हम भर भर के।
1: तो आप मन ये जिन खन खन के कहा था तो माटिल किसे झर रहा था जी?
0: आया कुदरी में झर जाते हो, कुदरी में खानिया तहा कुदरी एक बैठ में झर रहा देवा तहा एक जगह कुढ़ोवा जाता है जाऊ हम भर के फिर पार में फेंक देता।
1: आगे लगा देता कि पाट
0: नहीं
1: देता?
0: पार में फेंक दे था नोला
1: अच्छा, मर जात हुई।
0: और सुखा जाते था है देखा हम।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ ठीक। आओ जिन ए खेत में बताता हो तो आओ का प्रकार के भी जिन हमारे किसान मन के जिन फसल के दुश्मन नींदा है वो जामेरी थी?
0: अब वही भैंसरा कान रहते कई ठान, कान भी रहते दुबी रहते वही मल सब निकाल था।
1: तो ये मन खेत के हमार फसल के दुश्मन है कहो?
0: हाँ फसल ना बहुत नुकसान पहुंचाते उमन।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो ये आप मन अभी निकाले के काम करत हो?
0: हाँ
1: अच्छे, खंती कुदारी कहे हो तो खेत में कैसे जानते हो कि ये मन के माटी हमला खनना है ऐसे कह के?
0: अब काहे डीपरा जल्दी सुख

0: जाथे और दिखते भी
1: हाँ
0: तीर में खड़ा होकर देखिया था, पता चल जाते कौन मेरा डीपरा है कौन मेरा गड्ढा है। आउ पानी की जमाव भी है, गड्ढा में पानी भर आ रहे थे डीपरा के, जल्दी सुखा जाते। हाँ वही माँ सब अंताज ले था।
1: माने खेत के डबरा खांचवा सूखा भीम पता चल जाते कहे जाए,
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ
1: हाँ तो ये तो बढ़िया है। अच्छा जे पानी गिरे है बताए हो,
0: हाँ
1: तो इधर से आप मान जेन का नागर अभी कह जाते ग्रीष्मकालीन जोताई अकरस,
0: हाँ
1: तो आप मन अभी एक आध दू खेत ला अभी जतवा है का।
0: अब यदि पानी गिरी तब हाँ चालू कर ही, अब थोड़ा सूखा मतलब जोताई चलते। हाँ
1: तो एकर से का फायदा हो तो भूल बतावा ना।
0: ओमा काहे जतका बन खाद आउ रही ते ना कम मर जाते, यदि घाम कर ही तहाँ ले दे जोता रहते ता आउ बढ़िया फायदा करते हुआ, मतलब बुआई के समय मना उसका ज्यादा नहीं लगा।
1: माँ कह जाए तो हल्का होते माटी है,
0: हाँ
1: उपजाऊ हो जाते है ना,
0: उपजाऊ हो जाते। हाँ
1: और फिर पानी भी जल्दी रुका तो ही माँ।
0: पानी रुकते ना। हाँ हाँ
1: तो अकरस के जोताई हमर किसान भाई मतलब अपन खेत के कराना चाहिए।
0: हाँ उमा काहे कुथुआ हुआ जामत रहते ना, उमा सब मर जाते उमा।
1: उमा आओ कई प्रकार के जैसन की नींदा जामत रहते उहु मन उकर बीजा मन
0: हाँ
1: ऊपर माँ के है ना
0: हाँ
1: खत्म हो जाते है
0: हाँ
1: ना। अच्छा तो ये तो हो गए अकरस जोताई के लाभ। ओखर बाद आप मन जिन खातु बताया गोबर खाद वगैरह ओखर प्रबंध कैसे करते हो
0: हाँ
1: आप मन।
0: अब गोबर खाद अभी गोबर ला गड्ढा बना के उसमें रखे रहता, तब वो एकदम 12 महीना में खातू बन जाते पूरा, तब वही ला ट्रैक्टर में भेजवावत रहता।
1: अच्छा
0: हाँ तो खेत मन में उदे रहते तहाले अब ओला थोड़ थोड़ करके उदे रहते तहाले पानी है गिर ही धान बोए के दिन आए तो वही ला फिर बगराए जाते।
1: अच्छा
0: हाँ
1: धान बोए समय।
0: हाँ
1: तो ये तो हो गया अपन के गोबर खाद के प्रबंध कर दो आप मन।
0: हाँ
1: ओखर बाद जैसन की किसान मन रासायनिक खाद है उमा का खाद के आप प्रयोग करता हो, कौन समय का अपन अपन प्रबंध करता हो कर।
0: हाँ आप सोसाइटी में ले रही थान, यूरिया ले थान, राखा ले थान, पोटास ले रहा थान, आओ ऐसे एक ठियाव
1: डीएपी वगैरह।
0: डीएपी, हाँ डीएपी
1: हाँ
0: ले रहा थान। हाँ
1: तो आप मन के गांव में मिल जाते सोसाइटी ले।
0: हाँ मिल जाते सोसाइटी मिल जाते।
1: अच्छा, तो उका ही बेरा अपन सुखा में घर में ला के रखे रहते
0: लाख रखी रहता हाँ हाँ
1: है ना। ओखर बाद तहां उका जब बाऊ गाते ब्यासी आते या
0: हाँ
1: रोपा है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: समय फिर अपन ओकर
0: हाँ
1: उपयोग ना कर सक कहे
0: उपयोग
1: जाए।
0: करता हाँ और का ज्यादा नहीं लगे, गोबर खातू रहते था कम मात्रा में लगते मतलब खातू हुआ।
1: हाँ
0: हाँ
1: दीदी आप मन से गोट बात तो हम करवे करत हन, और बढ़िया बात आप मन सुरता देवा दिया कि अब बीजा के तैयारी यही समय ले करे जाते। जैसन कि आप मन कोहणा लगाया हो तो शुरुआत बोनी की कर दिए हो, तो
0: हाँ
1: ये बतावा कि आप मन धान के जिन्हें तैयारी कौन ढंग ले करत हो, कैसे करत हो, पहचान कैसे करत हो ओला बतावा तो।
0: धान महामान 21 ठन लेथन पोट पोट बीजा ला, और तला ले पानी लाथन और ला रात भर डुबा देथन धान ला, और सुबह फिर ओला सूती के कपड़ा मा 21 ठन ला हमन बांध के देखथन,
1: अच्छा
0: पैरा मा गुरमेट देथन या पत्ता मा परसक पत्ता गुरमेट के ओला कुछ हम लतक देथन पत्थर उथरा मा, अब तहाँ ओला 4 दिन बाद देखथन, 3 दिन में तो हम फुट्टी हो जाते, चौथा दिन वो जराई आ जाती, यही पहचान करथन हमन बीजा की।
1: तो 21 ठन मके किट हो जानते तो अपन उधान ला बीजा के रूप में प्रयोग करते हो आप मन।
0: मतलब वहाँ बने कंजामे रहते हैं जैसे कई ठन है, एक आध दूठी नहीं जामी तब वो मतलब
1: अने
0: अच्छा है।
1: प्रतिशत आप मतलब पता चल
0: हाँ
1: जाते कि
0: हाँ हाँ
1: तो एक आध काठा अक्तहा डालत हो हम,
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: तो ये बताओ को ए साल ए बच्चर खरीफ में अपन का धान लगा के तैयारी करे हो, काला काला भींगा के देखे हो जमा के।
0: अब हमारे ही ये चिमटी ल देखे हमन, चिमटी ऐसे जेन जेन धान बोना है तेन मक सबे देख लेते, लेकिन ये चिमटी ल भी देखे हैं तो वह मतलब बढ़िया जाग गए हो, बढ़िया है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: किसान मन अभी ये अपन के गांव कह जाए का धान लगाते ज्यादा महामाया
0: हाँ
1: एक
0: वैसे
1: हजार दस 1001।
0: हाँ सोना मासूरी लगा लेते, 1010 लगा देते, HMT लगाते, अब यही सब लगाते, सोना धान लगा लेते। अब पुराना धान मन तो अब नंदा गया, अब नया नया आगे सोसाइटी भी मिल जाते,

0: मतलब सब लगाते हैं वेदे।
1: तो ये बीज आप मन सोसाइटी से प्राप्त हो जाते आप मन?
0: हाँ सोसाइटी में मिल जाते और अखेरा थान बीज है। हाँ
1: अच्छा, तो आप मन बढ़िया अच्छा तरीका अपनाए हो
0: हाँ
1: बीज चयन करे के। आप मन अगर घरेलू बीज चयन कर रहे तो आप पहले जमा के देखते हो कहे जाए,
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना?
0: हाँ
1: और सोसाइटी ले आते तेनों जमा था आप मन उल
0: अब
1: देखते
0: वो
1: जमा
0: देख
1: के।
0: रहे थान या फिर वहां उमन खुद परीक्षण करके दे रहे थे कि है अच्छा है कि
1: लिखा रही थी
0: दिखा
1: मन
0: रहे थे वहां।
1: हाँ, और बढ़िया कहे जाए ये प्रकार ले अपन बीज के चयन कर थो आप मन, है ना?
0: हाँ हाँ बीज
1: है
0: ला जमा ले थान और नल के पानी में नहीं जागे हुआ तालाब लावे पानी तो जागते हुआ या
1: अच्छा,
0: फिर ऊपर ले गिरे रही पानी तेन में जागते बादल ले गिरी तेन।
1: आ ये बोर के पानी नल के
0: हाँ
1: पानी में
0: नहीं
1: तो
0: जामा है नहीं जागे नहीं जागे कई
1: आदमी
0: ठन।
1: है किसान भटक जाए फिर तो
0: हाँ हाँ
1: तला के ही पानी मौका जमा के। अच्छा, रात भर भींगा था का?
0: हाँ रात भर भिंगा दे रहा था। हाँ
1: अच्छा, ओकर बाद पोटरी में
0: हाँ
1: बांधा
0: हाँ
1: और पैरा मदन काय भर पानम करके
0: हाँ
1: भर
0: हाँ
1: सके लपेट के फिर रख देते हो,
0: हाँ हाँ
1: ओकर बाद फिर देखता हो, है ना?
0: देखथन 3-4 दिन बाद देखथन 4 दिन में।
1: अच्छा, तो ये प्रकार ले अपन बीज के चयन और बीज के उपचारित,
0: हाँ
1: है ना?
0: हाँ
1: ये सबो चीज देख के ही अपन फसल के बुनी करता कहे जाए।
0: हाँ हाँ
1: बड़ा सुखर बात बताए हो जी, अच्छा लगे सब। यानी कि आप मन के कहे के मतलब है हम आप मन पारंपरिक और जेन गोबर खत्ता खातु है ना,
0: हाँ हाँ
1: ओखर प्रयोग आप मन अपन खेत में हर बछर डालता हो कैसे पुर जाते पूरा गोबर खत्ता कैसे करते हो?
0: हाँ इसे हर साल मतलब आग पर था एक आग साल दूसर जगह चल देता आने आने खार में। हाँ इसे करके डाल था।
1: अने हर 3 बछर में अपन अपन खेत में
0: हाँ
1: गोबर खाद डाल के काम
0: हाँ
1: करते हो,
0: हाँ
1: है ना?
0: हाँ
1: तो कुल मिला के अभी आपो मन थके मादे आए हो, भूख लगत हो ही लगत है, रोटी टू लेके जाता हो?
0: हाँ हाँ लेके रहे ना रोटी लेके रहे
1: का
0: ना
1: रोटी लेके रहो? अच्छा,
0: अब मोटा रोटी है वही काट करते हैं बाहर में आमा
1: तो उस संग आमा क्या
0: के।
1: थान
0: हाँ लेके रहे ना आमा के चटनी लेके रहे ना।
1: दारे आमा चटनी
0: हाँ
1: कि नवा कि जुन्ना
0: वह
1: है?
0: जुन्ना ए दे नया डालबो अब
1: अच्छा, पानी गिरी तहां
0: पानी
1: डालिया।
0: गिरी तो डालबो। हाँ
1: हाँ चलो भाई, आज अपन खेती किसानी के बाद किसान मन अभी का काम बुता कर रहा था भाई, काम भद्रा है ये जमो बात ला भाई गोठिया है हमर तक के निश्चित है आप मन के गोठिया के जानकारी के लाभ हमर किसान भाई बहनी मन ले है। आज अपन समय निकालो, समय निकाल के आकाशवाणी बिलासपुर संग गोट बात करे हो, एकर बार अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार दीदी।
0: राम राम जय जोहार राम राम।
1: तो सुना संगवारी हो ए तरुई से बिंदु जेनवन बहुत सुघर बढ़िया अपन खेती किसानी ले काम ले करके आई से अपन अनुभव के बाद हमार तक गोठियाइन हवा। अब आओ चला देखा था कौन किसान है जेकर से हम गोट बात करवो। ये देखो एक किसान आऊ आता हुआ उनको से हम गोट बात करवो। राजेन भाई राम राम।
2: राम राम वीरू भैया राम राम।
1: राजेन भाई
2: हाँ
1: आप एक किसान हो, सफल किसान हो, बहुत बढ़िया किसानी के एक बुतल आप मन करते हो,
2: हाँ भैया
1: तो ये बताओ अभी आप मन का काम करत हो भैया?
2: अभी वही खेती किसानी के काम चला थे भैया। खेती किसानी लगे है करेला भाटा गन्ना
1: हाँ, ये जिन खेती किसानी आप करत हो भैया तो
2: करेला
1: ये गन्ना
2: उसके
1: आप मन लगाए हो तो ये का किस्म के गन्ना है भैया?
2: ये है अमन छत्तीसगढ़ी में पलासर और अस्फारम कुछन भैया।
1: तो ये कुशियार लगा के तैयारी आप मन कौन प्रकार करे हो, कैसन खेत के माटी के तैयारी करे हो, थोड़कन बताओ भैया।
2: ओका भैया गाय है जब लुआई से धान है ना लुआई के बाद ओला इस तो को जोत जोत के 3-4 बार जोत जोत के सुखाएन ओला।
1: अच्छा
2: सुखाए के बाद फिर गोबर खाद डालें।
1: हाँ,
2: गोबर खाद डाले के बाद फिर जोतें ओकर ले फिर रोटोवेटर चलाएं ओकर ले हमन अपन भाषा में जोरा कैथन
1: जी
2: जोरा बनाएं।
1: हाँ,
2: जोरा वाला बनाए के बाद गन्ना लवी लो एक एक ठो पचपच ठो खिला खिला के पानी ले ढीलथन ओमा।
1: जी हाँ
2: तो पानी ले ढीले के बाद ना गीला हो जाते तो में बीच बीच में हाथ मन में
1: हाँ हाँ
2: उमर डालथन भैया।
1: अच्छा
2: ओकर बाद तहा 15 दिन में फिर सरवानी पानी की थे तेन देथन।
1: अच्छा एकर बीज है उखर बर का बात के आप ख्याल रखो भैया, कैसन होना चाहिए वो जिन बीज है वह?
2: वो बीजिया बीज का भैया ओकर अखिया कही थे नान नान आखी आखी टाइप के रहते ओकर ख्याल रखना विशेष रहते भैया।
1: अच्छा
2: हाँ तो 3-3 अखिया के ना एक ठो काटथन हमन
1: अच्छा
2: जो
1: यानी
2: बड़े।
1: एक जिन आप मन चयन करे हो डंडा उखर के दे, है ना?
2: हाँ डंडा ला
1: तो उमा 3 आंखी होना जरूरी है।
2: हाँ ओला हमन गड़ेरी कही थन।
1: अच्छा, गड़ेरी कहे जाते होकर छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना?
2: हाँ
1: हाँ, तो इला
3: फिर कैसे खेत में का डालता हो, आप मन खड़ी डालता हो।

0: कि बेढ़ा डाल था।
1: बेढ़ा डाल था नैया, बेढ़ा बेढ़ा।
0: हाँ
1: स्टार्टिंग करता वहाँ पांच ठोक का खड़ी डाल देता।
0: हाँ
1: ओकर बाद तो हम बेढ़ा बेढ़ा डाल था।
0: अच्छा ठीक, तो एक दूरिया कतेक कतेक दूरिया आप मन ने का लगा था।
1: अब पांच फीट के बनाए थे नाली जुड़ा ला, तो पांच गड़ेरी करता माने पांच से पंद्रह ठोंकिया।
0: तो खेत के तैयारी आपन करता तो उस समय का खातू डालता हो आपन माटी में?
1: अब वो समय हमन सर्वप्रथम तो गोबर खाद का प्राथमिकता देते हैं।
0: हाँ
1: गाय हम कैल्शियम मैग्नीशियम सब चीज अवेलेबल रही थी। ओकर बाद डाले जब लगाए गए एक दो दिन पहली फिर राखड़ और पोटास का छींचथन।
0: हाँ
1: ओकर बाद लगा देथन, लगाए के बाद जग जाते हुआ तब 20-25 दिन में ओकर कोड़ाई करथन। कोड़ाई करे के बाद फिर DAP और पोटास का डाल के ओकर दबाथन भी है कोड़ कोड़ के।
0: अच्छा माटी डालते हो आपन?
1: हाँ माटी डालते हैं जड़ जड़ में।
0: हाँ हाँ
1: गन्ना गिरा है मत कही के।
0: अच्छा ओकर बाद पानी कते कते दिन में आपन देता हो?
1: अब पानी लो का मौसम के अनुसार देख देख के ढेल पड़ते भैया।
0: हाँ
1: हमन का है देथन ना तो ढेला थोड़ा मोटी देते उखाड़ के देखथन।
0: हाँ हाँ
1: अगर नीचे में नमी है तो नहीं देवान।
0: हाँ
1: नीचे से नमी अगर कहीं 3 इंच से ज्यादा चल दे रही थे 2-3 दिन से
0: हाँ
1: तब
0: हाँ
1: फिर पानी डालथन अमन में।
0: अच्छा ये प्रकार अपन भौतिक परीक्षण करते हो पहली पानी डाले पहली?
1: हाँ भौतिक परीक्षण करथन परीक्षण
0: हाँ हाँ
1: गवाई के।
0: तो एमा पोटास वगैरह डालता भाई?
1: हाँ पोटास के तो उपयोग ज्यादा होते भैया। पोटास के जब तक तो उपयोग नहीं हो गन्ना है ना
0: हाँ
1: कोई ज्यादा कह जाए प्रगति नहीं करे।
0: अच्छा ये कुसियार के
1: नाइट्रोजन
0: खेत।
1: डालिए तो का है नाइट्रोजन में सिर्फ गन्ना बढ़ी ही मोटापा नहीं आवे।
0: अच्छा ठीक ठीक
1: जब तक के पोटास का नहीं डालबो गोबर खाद लेना तो मोटाई नहीं हो है। तो गन्ना के लिए मोटा करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है गोबर खाद और पोटास। नहीं होता
0: वाह, तो खास करके पोटास के महत्व तो ज्यादा है कुसियार के खेती में।
1: कुसियार की खेती में सबसे महत्व पोटास और गोबर खाद।
0: जी जी जी अब बात करबो राजेंद्र भाई आप मन से, आप मन बताया करेला के भी खेती करथन करके, तो ये करेला खेती पर कैसे ढंग ले आप मन खेत के चुनाव करे हो और कैसे तैयारी करे हो तेला बताओ।
1: करेला माँ अब थोड़ा से अंतर है भैया, थोड़ा से अंतर।
0: जी
1: उंगला हमन पहली धान लुआए थे तेने समय गन्ना के ला जुताई कर देथन
0: हाँ
1: और एका लगाए के 15 दिन पहली करथन।
0: अच्छा ये अंतर है कह दे।
1: 15 दिन पहली 2-3 बार जोतवाथन, रोटोवेटर चलवाथन।
0: हाँ हाँ
1: अब मैं इरिगेशन सिस्टम से करता हूँ भैया टपक पद्धति से।
0: जी जी
1: ओकर बाद मांदा बनाथन गोबर खाद वा डाल के पोटास और DAP डाले के बाद रोटोवेटर चलवा के बाद मांदा बनाथन। ओकर ले कुछ बेसल वेसल डाल देथन मैग्नीशियम पोटास मांदा मन में ओकर ले मल्चिंग पेपर में ढकथन भैया वाला।
0: अच्छा ये मल्चिंग पेपर जेन पन्नी है ओकर ले का फायदा होते भाई और बताओगा?
1: ओकर ले फायदा ये भी सर्वप्रथम तो कचरा नहीं जगह। हाँ नींदा कचरा।
0: हाँ
1: ओमल मजदूरी के बचत होते भैया।
0: ठीक है राजन भाई आप मन बड़ा सुग्घर ढंग ले कुसियार के खेती के विषय में संगे संग करेला के खेती कोन ढंग ले करे जाए आज गोट बात के माध्यम ले हमन ने बताया हो। आप मन के बताए ये गुणवत्ता युक्त गोट बात ला जरूर किसान भाई मन सुनी सुन के लाभ ले है। आप मन समय दिया एखर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार।
3: तो किसान भाई बहनी हो ये तो रही से स्थल ध्वनांकन यानी कि स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव के तहत ग्राम पंचायत सकर्रा के किसान मन से गोट बात। अभी किसान मन से विदा लेह के संगे संग आपो मन से हम विदा लेह के पहली आप मन बता दीन कि ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन वीरू वीरेंद्र निर्मल करके, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारदन के रही से। अब जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।
4: तो संगी हो एक किसानवाड़ी गांव क्रम में आप मन सुने हैं किसानवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत में। अब एक ठीक जुन्ना गीत सुनत हन आप मन सुन के बतावा कैसे लगी कह के एक बात गोट बात करबूं।

हाँ संगी हो, किस्मत बाई देवार के गाए यही गीत के संग सिरात है हमार आज के कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आखिर में बता देथन आज के जैन बिलासपुर के न्यूनतम तापमान रही से 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रही से 44 डिग्री सेल्सियस। और खेती किसानी में बात करी, माटी जांच करा ले हा, और पानी के मात्रा जैन है ना ओकर हमला बचत करना है, पानी की बचत करना है, माटी के जांच कराना है, कई बात के ध्यान रखना है। एकरे संग सिरात है आज के किसान वाड़ी कार्यक्रम। बैसाखू के राम राम, जय जोहार।

अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। रात के 8 बजे हैं और अब लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के इस अंक को आज हम सजा लाए हैं भूपिंदर सिंह के गाए गीतों से। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का इस गीत से।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस संदेश के पहले आपको भूपिंदर सिंह की आवाज में जो गजल हमने सुनवाई उसे लिखा था वशीर बद्रनी, और अब आइए सुनते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में कतील राजस्थानी का लिखा हुआ ये गीत।

भूपिंदर सिंह के गाए इसी गीत के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। और अब कार्यक्रम संबंधी यह सूचना सुनिए, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोद्यान की स्थापना एवं फूलों की उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 होने को है और अब आइए रुख करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम के इस अंक में अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, रजनीगंधा की इस महकती महफिल में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। जिंदगी के सफर में दिन, महीने और साल गुजरते जाते हैं, मौसमों की तरह उतार चढ़ाव लेकर। कभी बारिश की बूंदें तरबतर कर जाती हैं और कभी धूप की तेज किरणें सहन शक्ति का इम्तिहान लेने लगती है, और इससे बचने के लिए हम ढूंढते हैं आसरा, साया और पनाह। लेकिन कुदरत का तो अपना ही रंग है, और जब कुदरत अपने तेवर दिखाती है तो फिर किसी का बस नहीं चलता, सभी को इसके आगे झुकना ही पड़ता है। तो आइए आज बातें करें धूप और छांव की, क्योंकि जिंदगी की सड़क पर चलते हुए कभी धूप हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है तो कभी घने पेड़ों की छांव हमें फिर से चलने का हौसला देती है। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते। तो चलिए इसी धूप छांव के खेल को समझने के लिए सुनते हैं ये गीत, जो हमें याद दिलाता है कि ये उतार चढ़ाव ही जीवन का असली रंग है।

सुलगती चिलचिलाती धूप में शीतलता की बात क्या बात है। श्रोताओं, सुलगती धूप में एक छत का साया भी बहुत जरूरी है, और वो छत अक्सर हमारे अपनों का प्यार होती है।

दोस्तों, धूप सिर्फ गर्मी नहीं देती, वो हमें निखारती भी है। सूरज की तपिश के बिना बादलों की कीमत भला कौन समझेगा। जीने का हौसला, कभी मरने की आरजू, दिन यूं ही धूप छांव में अपने भी कट गए। कभी कभी जिंदगी में संघर्ष की धूप इतनी तेज हो जाती है कि हमें बस एक ठंडी छांव की तलाश होती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इसी तलाश और सफर की बात करता है।

स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। दोस्तों, यादें भी तो धूप छांव जैसे ही होती हैं ना। पुराने यादों की किरणें जब मन के किसी कोने में पड़ती हैं तो मन का कोना कोना रोशन हो जाता है। ऐसे में बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। रिश्तों में कभी तकरार की धूप होती है तो कभी सुलह की छांव, और इन्हीं खट्टे मीठे एहसासों के बीच जिंदगी गुजरती है। चलिए, अब वक्त है एक ऐसे सुकून भरे नगमे का जो धूप जैसी ताजगी और छांव जैसी ठंडक देता है।

वैसे धूप हमेशा न तो तीखी होती है और न ही चुभने वाली। याद कीजिए, सर्दियों के दिनों में खिली खिली सी धूप के लिए हम कितना ललायित रहते हैं, और बरसात में कई कई दिनों तक धूप की एक झलक को भी तरस जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि धूप अलग अलग वक्त और मौसमों में अलग अलग एहसास दिलाती है। दोस्तों, हम अक्सर धूप से डरते हैं और छांव की तलाश किया करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आसमान में धूप न तपता, सूरज न तपता, तो क्या खेतों में फसलें पकती? क्या बादलों को बरसने का बहाना मिलता? धूप संघर्ष का प्रतीक है, मेहनत का पसीना है, जिंदगी की तपिश को मुस्कुरा के झेलिए जनाब। जिंदगी की तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए जनाब, धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते।

जब तक किसी के जीवन में मुश्किलों की धूप नहीं आएगी, तब तक उसे अपनी काबिलियत का एहसास भी नहीं होगा। धूप ही है जो हमें छांव की अहमियत सिखाती है। और फिर आती है छांव, ठंडी, सुकून भरी, किसी की ममता जैसी। छांव का मतलब सिर्फ पेड़ के नीचे बैठना नहीं है, छांव का मतलब है कि जैसे माँ के आंचल की छांव, पिता की सुरक्षा का साया, दोस्त का कंधा, और वो हमसफर जिसकी एक मुस्कुराहट दिन भर की थकान मिटा दे।

श्रोताओं, अगर आज आपकी ज़िंदगी में दुखों की धूप बहुत तेज हो तो घबराइए मत। याद रखना चाहिए कि पेड़ जितना ऊंचा होता है, जितना घना होता है, उसकी छांव भी उतनी गहरी होती है। आपकी आज की मेहनत की धूप कल आपके परिवार के लिए सुकून का छांव बन जाएगी। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो।

और अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सूरज की धूप उसकी तपिश आपके लिए शीतलता लेकर आए, आपके जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं लाए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम का ये अंक संपन्न करते हैं। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोद्यान की स्थापना एवं फूलों की उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665992। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है।

0: इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स

0: के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर

0: उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी सुपग में कभी

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: फीका फीका है दिल का जहां छुपी है कहां मैं तड़पता।
1: हृदय गति रुक जाने से मुंबई में अभिनेता महिपाल का निधन हो गया। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की अनमोल

0: मत रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: ओ तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घिराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरो औरो, और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देख

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की

0: वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and Chief Minister